0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: कल 14वीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। इब्ने इंशा की कलम और जगजीत जी की आवाज में हमने सुनी ये खूबसूरत गजल। और नए साल के इस नए से मिर्ची महफिल में आपका इस्तकबाल करता है आपका ताशी। हाँ जी, और चांद का इस्तेमाल तो आपने कई बार सुना होगा शायरी और कविताओं में, लेकिन आज आपको बताऊं चांद का एक पर्यायवाची, बोले तो सिनोनिम, जिसका इस्तेमाल करके भी कई सारे शेर हुए हैं, और वो लफ्ज है महताब। अब इसका इस्तेमाल आप देखें दो शेरों से। पहला अजहर इनायती साहब की कलम से लिखते हैं कि हर एक रात को महताब देखने के लिए मैं जागता हूँ तेरा ख्वाब देखने के लिए। वाह जी वाह, हबीब जालिब के यहाँ भी बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है चांद के सिनोनिम महताब का। गजल के दो शेर मुलायजा फरमाएं कि हमारी भी संभल जाएगी हालत, वो पहले अपनी जुल्फें तो संभालें, निकलने को है वो महताब घर से, सितारों से कहो नजरें झुका लें। आए हाय, अब चांद से डिराइव्ड एक और लफ्ज है चांदी, जिसके बड़े खूबसूरत इस्तेमाल के साथ आप सुने जफर गोरख पुरी साहब का लिखा अगला आइकॉनिक नगमा, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। पंकज उदास साहब की आवाज में सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स

0: बाकी सब गंगा।
1: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर, डाउनलोड नाउ।
2: हेलो
3: मैडम, गुड इवनिंग।
2: हाय,
3: बैंक से बोल रहे हो ना? हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
2: सब्जी बेच रहे है या लोन के लिए?
3: पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना
3: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा, सारे दांत बात कर दो।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगे तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
2: है।
3: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी,
2: सॉरी ना मैं, आई एम सॉरी।
4: प्यार से बोल दीजिए, कुकड़ो को
2: कुकड़ू गो।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: हाय, ये दिल, ये पागल दिल मेरा, मोहसिन अली नकवी साहब की कलम और गुलाम अली साहब की आवाज में सुनी हमने ये खूबसूरत गजल सिर्फ मिर्ची महफिल पर. और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपका ताशी आपको रूबरू करवाए उर्दू के पहले सबसे बड़े शायर जिन्हें खुदाए सुखन मतलब शायरी का खुदा कहा जाता है. मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन मीर तकी मीर साहब की. 1810 के लखनऊ में इनका जन्म हुआ और लफ्जो मानी के जादूगर बेमिसाल शायर मीर तकी मीर उर्दू गजल का वो प्रेत हैं कि जो उसकी जकड़ में आ जाता है जिंदगी भर वो उसके अधीन ही रहता है. बड़े आइकॉनिक शेर रहे हैं उनके जिनमें से कुछ आपके नजर कर रहा हूं. लिखते हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया. तदबीरें मतलब टैक्टिक्स. उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया. देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया. एक और मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है उनका कि होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर. होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर क्या रब्त मोहब्बत से उस आराम तलब को. वाह जी वाह, उनकी शायराना काबिलियत का इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि जमाने के मिजाजों में बदलाव के बावजूद उनकी शायरी की महानता का सिक्का हर दौर में चलता रहा. खैर, बहुत हुई बातचीत, ज्यादा वक्त जाया करे बगैर राजेश रेड्डी साहब की कलम और हरिहरन जी की आवाज में सुनते हैं अगली गजल हल्का सा एक नशा सा सिर्फ मिर्ची महफिल पर. आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट.

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: नुसरत साहब की आइकॉनिक आवाज में हमने सुना ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और आपका ताशी है आपके साथ। और दर्द हल्का हल्का हो या सुरूर, दोनों ही हालतों में दर्दीले लोगों को बड़ा मजा आता है। गुलजार की वो गजल याद आती है मुझे कि दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है, आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है। वाह जी वाह। और ये जो हल्का सा दर्द है ना, कुछ तो रिलेशन है इसका और रात का। जैसे जैसे रात और काली होती जाती है, ये दर्द और बढ़ता जाता है। अगला नगमा सुने मखदूम मोहियुद्दीन साहब की कलम, लता जी और तलत अजीज की आवाज में, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट और उससे भी उम्दा गजल हमने सुनी भूपिंदर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में। और अब वक्त आ गया है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: की मिर्ची महफिल में आपका ताशी आपको सुनाए एक गजल जो उसके जहन में अटकी पड़ी है। बिल्कुल। और ये जो गजल है ये बहादुर शाह जफर साहब ने लिखी थी और इसको गाया है मेहंदी हसन साहब ने। एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से, मेरी बड़ी पसंदीदा है, तो अगर कुछ भूल चूक हो माफ करिएगा। पेश खिदमत है सिर्फ आपके लिए।

इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए अगला नगमा पेश है आपके लिए शफकत अमानत अली की आवाज में, फिर ले आया दिल। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: फैयाज हाशमी साहब की कलम और फरीदा खानम जी की एवरग्रीन आवाज में सुनी हमने हम सब की पसंदीदा गजल आज जाने की जिद ना करो। मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और अभी तो इस सफर के दूसरे पड़ाव में ही है हम, अभी कहीं जाने का इरादा नहीं है मेरा। मुझे ना धीरे धीरे ये पता चला कि फेसबुक में वो इन रिलेशनशिप और सिंगल के ऑप्शन के साथ इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाला ऑप्शन क्यों होता था। इंसान ऐसा जानवर है ना जो इतनी रेंज ऑफ इमोशंस को महसूस कर सकता है कि खुद उसे ना समझ आए वो क्या कर रहा है। दो शेर देखें जिनमें इश्क का कॉम्प्लिकेटेड नेचर साफ दिखाई देता है। आरजू लखनवी साहब लिखते हैं, दिल की जिद इसलिए रख ली थी कि आ जाए करार, कल ये कुछ और कहेगा मुझे मालूम न था। ओए होए। और दूसरा मेरा बड़ा पसंदीदा शेर खुमार बाराबंकवी साहब की कलम से, ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, जज्बात में वो पहली सी शिद्दत नहीं रही। उफ, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो मैथ में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होता था। खैर अब खुमार साहब की बात छिड़ ही गई है तो उन्हीं की कलम से हरिहरन जी की आवाज में अगली गजल, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। ओनली ऑन मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La virpa la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं
2: आप? कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास, अरे यार जैसे आपके पास आया कि भी अगर आप खाली बैठे,
4: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता
3: है। आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रहे हैं? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा हूँ या लाइन में आ रहा हूँ? अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे को जा रहा
2: है, तो
4: यार बदतमीजी बदतमीजी मत कर,
2: मुझे बात करने दे, पहले दो मिनट रुक जा।
4: तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये कुकुकु।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मुजफ्फर वारसी की कलम और हरिहरन साहब की आवाज में हमने सुनी गजल। झूम ले हंस बोल ले प्यारी अगर है जिंदगी, सांस के बस एक झोंके का सफर है जिंदगी। और मिर्ची महफिल पर अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि अपनी डायरी के कुछ सफ़े पलटूं और आपको सुनाऊं एक पुरानी याद। हमारी जो हिंदी टीचर थी ना कविता मैम, वो बचपन में एक फ्रेज सिखाया करती थी कि जीवन क्षण भंगुर है, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन हुआ लाइफ इज मोमेंट्री। ठीक है, और जिंदगी के सुख दुख, हंसी और आंसू, शोहरत और बदनामी, सब कुछ फेड हो जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं जहन में घर कर गई और थोड़े बड़े हुए तो जफर इकबाल साहब को पढ़ा और उनका ये बड़ा ही बेहतरीन शेर मुझे याद आता है इसी बात पर। लिखते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। ओफो, मतलब इतना सटीक धारदार शेर लगता है ना मुझे ये। खैर, आए अगला नगमा सुनते हैं जावेद अख्तर साहब की कलम से, चित्रा और जगजीत जी की आवाज में, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर, डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: जफर गोरखपुरी साहब की कलम और पंकज उदास जी की आवाज में हमने सुना नगमा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे किस्सा कॉर्नर।
1: की आपका ताशी सुनाए आपको आज का किस्सा जो आ रहा है जिगर मुरादाबादी साहब की जानिब से। किस्से का नाम बंदों की खुशी। एक बार जिगर, शौकत थानवी और मजरूह सुल्तानपुरी दोपहर के वक्त कहीं काम के लिए बाहर निकले थे, तो इरादा किया गया कि नमाज अदा कर ली जाए। शौकत साहब एक काम के लिए चले गए, जिगर साहब मस्जिद के बजाय एक रेस्टोरेंट में जा घुसे। मजरूह ने कहा, जिगर साहब ये मस्जिद नहीं रेस्टोरेंट है। जिगर ने जवाब दिया, मुझे मालूम है, सोचा कि वक्त तंग है, अल्लाह को तो खुश कर नहीं सकता, उसके बंदों को ही खुश कर लूं, आइए। वाह जी वाह, काश हमारे दोस्तों में भी इतना सुहूर होता जिगर साहब जैसा कि बिना मांगे पार्टी दे देते, है कि नहीं। खैर मजाहिया बातों से आगे बढ़ते हैं लता जी की आवाज में रेंडर्ड एक खूबसूरत नगमे की ओर। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।
3: ये

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: वाह, अहमद फराज की कलम और मेहंदी हसन साहब की आवाज से सजी ये खूबसूरत गजल रंजिश ही सही हमने सुनी सिर्फ मिर्ची महफिल पर, और आपका ताशी है आपके साथ। और अब जब भी मैं ये गजल सुनता हूँ ना, मुझे लगता है लोग कितने अजीब होते हैं। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, मतलब दुख भी सहने को तैयार है। पीरज़ादा कासिम साहब की एक बड़ी रिलेटेबल गजल याद आती है मुझे, वो लिख गए कि गम से बहल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, दर्द में ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने, हाथ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। अरे यार, ये तो वही बात हो गई कि ब्लॉक करके फिर अनब्लॉक कर दिया। खैर जानी, ऐसे ही अजीब अगर आप भी हो ना, तो आइए साथ मिलकर सजाएं ये खूबसूरत महफिल सिर्फ मिर्ची पर अपने ताशी के साथ। इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ठुकराओ अब की प्यार करो, मैं नशे में हूँ। शाहिद कबीर साहब की कलम और जगजीत जी की आवाज से सजी ये उम्दा गजल हमने सुनी सिर्फ मिर्ची महफिल पर, और आपका ताशी है आपके साथ। और कोई जब किसी शख्स को छोड़ जाता है, हर इंसान अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम लेता है, अलग अलग वक्त लेता है उस सदमे से उबरने के लिए। लेकिन अगर एक बात मैंने पाई है वो ये है कि उबर सब जाते हैं। स्वप्निल तिवारी साहब का एक शेर जहन में आता है जो इस नए साल और बिछड़े यार दोनों मौजू पे फिट बैठता है। वो लिखते हैं कि और कम याद आओगी अगले बरस तुम, और कम याद आओगी अगले बरस तुम, अब के कम याद आई हो पिछले बरस से। वाह, मैं पता है लगभग भूल गया था इस शेर के बारे में, मगर उसकी याद आई तो साथ ही ये भी आ गया। खैर, राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में ये अगला नगमा सुने आप। इट्स वेरी आइकॉनिक ऑब्वियसली। सानू एक पल चैन ना आवे, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: हेलो मिस्टर विपुल, मैं से बोल रहा हूँ। आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स। तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
2: इनबॉक्स चाहिए? इनबॉक्स कैसा मतलब?
1: मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना। तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा। अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
2: नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
1: हाँ बताइए।
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
1: नहीं, वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
1: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
2: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना। अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
1: बिल्कुल
2: से कम मुझे
1: बिल्कुल
2: से,
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
2: जा कहाँ रहा है?
1: नहीं वो जा कहाँ रहा है, जा यहीं रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको?
1: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
2: यार क्या बात कर रहा
1: है,
2: मतलब
1: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
2: चल
1: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था, सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए। सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
2: बिल्कुल
1: क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
2: हेलो
1: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
2: आपको आपको से फोन मत करियो, मैं तुम्हारा इनबॉक्स बना दूंगा, दिमाग खराब कर
1: दिया। क्या क्या क्या यार, बात सुनिए आप मेरी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बात। विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: शहरयार की कलम और तलत साहब की आवाज में सुनी हमने खूबसूरत गजल, जिंदगी जब भी तेरी बज्म में लाती है हमें, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि आपको मुखातिब कराएं हमारे आज के लफ्ज से, रफ्ता, जिसका मानी होता है स्लोली या धीरे। अब तस्लीम फाजली साहब की लिखी और मेहदी हसन साहब की गाई मशहूर गजल का ही एग्जाम्पल ले लें। शेर है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, मतलब धीरे धीरे वो मेरी हस्ती, मतलब बीइंग का सामान हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। और अब एक और शेर देखें कुमार बाराबंकवी साहब के जानिब से, लिखते हैं कि भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए, आए हाय। तो ले जस्ट लाइक दैट आपके उर्दू लफ्जों के आर्सेनल में जुड़ गया है एक नया लफ्ज, रफ्ता, मानी स्लोली। ऐसे ही और लफ्जों को समझने जानने के लिए जुड़े रहें मिर्ची महफिल से। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: आनंद बख्शी जी की लिरिक्स और सुरेश वाडेकर साहब की आवाज में हमने सुना सनी मूवी से नगमा और क्या अहदे वफा होते हैं। और मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और इश्क मेरे ख्याल से ना वो बीमारी है जिसमें शख्स जब पड़ता है तो उसका इलाज ढूंढने के बजाय और बीमार होना चाहता है। अकबर इलाहाबादी साहब का एक बड़ा उम्दा शेर है कि इश्क के इजहार में हर चंद रुसवाई तो है, पर करूं क्या, अब तबीयत आप पर आई तो है। मुनव्वर राणा साहब के यहाँ भी इश्क को एक बीमारी की तरह ट्रीट किया गया है। वो लिखते हैं कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। उफ, अगली गजल में आप मुलाकात करेंगे एक बीमार से जो पूछ रहा है दूसरे से कि तुम भी बीमार हो कि नहीं। कैफी आजमी साहब की कलम और जगजीत जी की आवाज से सजी ये खूबसूरत गजल, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, फरीदा खानम जी की आवाज में सुनी हमने ये खूबसूरत गजल। समय हो चला है मेरे जाने का, लेकिन ऑब्वियसली जाने से पहले
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आप हैं अपने ताशी के साथ, और ये मेरा ख्याल है कि सच्चाई सबसे ज्यादा उदास होती है। कुछ गजलें जो सबसे ज्यादा सच कह रही होती है ना, सबसे ज्यादा ट्रूथफुल साउंड करती हैं, वो ऐसे कचोट देती हैं अंदर से ना एकदम। ये गजल उनमें से एक है और न जाने क्यों मेरे जहन में अटकी हुई है। तो आज रात आपके नजर है जगजीत सिंह जी की ये खूबसूरत गजल मिर्ची महफिल पर।

0: कोई जवाब है आपके पास?
1: मेरे पास तो नहीं है दोस्त, तो इसलिए मैं चुपचाप यहां से अपना सामान बटोर के चलने वाला हूँ। एक गजल के हवाले करके आपको छोड़ जाने वाला हूँ मैं। अगर आपको मुझसे कुछ बातचीत करनी हो तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून टू मिर्ची, मिर्ची महफिल सुन रहे थे आप। आपका ताशी था आपके साथ। इट्स हॉट।

0: है सांबा, जिंदगी की बरसात है, आज रात है, टाइम पास है।
1: हेलो,
2: हाय, ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
3: हेलो,
1: हेलो,
3: कौन बोल रही हैं?
1: आप कौन बोल रही हैं?
3: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
1: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
3: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
1: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
3: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
1: ये तो वहाँ से मेरे पास,
3: अरे यार
1: जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
3: हो सकता है, हो सकता है।
2: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
3: हेलो,
1: हेलो,
3: कौन बोल रही है? अरे भाई Hello? यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे, जहाँ तो दो मिनट रुक के तू कर ले, तेरे कुछ जा रहा
1: है,
3: बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
2: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू।
1: हेलो
3: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
1: तो मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

0: हिंदी फिल्मों की प्रेम कहानियों का इतिहास गवाह रहा है कि जब जब हंसते गाते खेलते बच्चों ने प्यार किया है, उनके पिताओं ने उसका विरोध किया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पता नहीं ये पिताजी लोग ठंड क्यों नहीं रखते थे, वाई वोंट दे जस्ट चिल। अभी मैंने प्यार किया फिल्म की बात करें, है लड़की के पापा तो ओके थे, लेकिन लड़के के पापा जो अमीर थे उनको ऑफ कोर्स प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज उनकी क्लास ऊंची थी, उनके पास ज्यादा पैसा था। गरीब घर की लड़की, हमको नाइट चाहिए। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट सॉन्ग, नेक्स्ट मूवी का सॉन्ग जो हम सुनने वाले हैं, कयामत से कयामत तक, इसमें तो बहुत ही बड़ी विकट समस्या थी, खानदानी दुश्मनी। लेकिन नतीजा क्या निकला? दोनों बच्चों की मौत और पछतावा। तो काहे को प्यार का विरोध करना। वैसे इस मूवी ने, इसके गाने ने बाप बेटे के रिलेशनशिप को लेकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंथम हमको दे दिया था। तो सुन लेते हैं, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।
1: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: रानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मैडम, गुड इवनिंग।
3: हाय,
4: बैंक से बोल रहे हो ना? हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
3: सब्जी बेच रहा है या लोन के
4: पहले? सब पहले सब्जी बेचता था।
3: अगर अगली बार फोन आ गया ना
4: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
3: हेलो
4: मैडम, अगर ये स्कीम लोगे तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा। वे
5: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है। यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
4: मेरा, आपका तो मुर्गा बन गया।
5: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
3: नहीं नहीं नहीं नहीं से सॉरी नवे, I'm sorry।
5: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है।
3: कुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

0: प्यार मोहब्बत में जिए मरे जा रहे हैं, बाप की मौत के बदले का क्या? कब लेगा रे तू अपने बाप का बदला?
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई हिंदी फिल्मों में बाप की मौत के बदले वाली थीम तो पिछले जन्म से चले आ रही है। हर डेकेड में पता नहीं कितनी ऐसी फिल्में आई हैं जिसमें बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ कुछ गलत हुआ या उन्हें मार दिया गया और फिर फिल्म के हीरो ने वो होते हुए देखा और फिर बड़ा होके उसने उसका बदला लिया। लेकिन 80s तक आते आते ना ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ। उसमें ये हुआ कि जो माँ थी उसने अपने बच्चों को सारी मुश्किलें फेस करते हुए पाल पोस के सिर्फ इसीलिए बड़ा किया ताकि वो बड़े होके अपनी बाप की मौत का बदला ले सकें। रिवेंजफुल माँ जिसके बच्चे उसका हथियार, पिक्चर ब्लॉकबस्टर है यार। ऐसी एक फिल्म राम लखन। हाँ पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

दयावान फिल्म का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस फिल्म की स्टोरी क्या है, एक बच्चा अपने बाप को पुलिस के हाथों अनलॉफुली मरते हुए देखता है, पुलिस से नफरत करता है, बड़ा होके गैंगस्टर बन जाता है। तो हिंदी फिल्मों में पिताओं ने बहुत अलग अलग चीजें दी है बच्चों को, पैसा, प्यार, परवरिश, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, ट्रॉमा भी दिया है लाइफ में, लेसन्स लाइफ में, मोटिव भी दिए हैं, सबसे बड़ा मोटिव बदला। अच्छा, एक फिल्म थी जिसमें बाप अपने बेटे के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज छोड़ के गया था, एक गैजेट जिसको हाथ पे पहन लो तो इंसान गायब हो जाए, दिखाई न दे, मिस्टर इंडिया। वैसे इस फिल्म में अनिल कपूर का जो किरदार था अरुण भैया, वो जिस तरह से कुछ अनाथ बच्चों को अपने घर में रखते हैं, उनके लिए प्रोवाइड करते हैं, आई थिंक वो एक फादरली लव की अलग ही डेफिनेशन है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन।

डॉन और डॉन का हम शक्ल विजय। हाई मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और अमिताभ बच्चन साहब ने कुछ 15-20 फिल्मों में डबल रोल तो किया होगा, जिसमें काफी फिल्मों में बाप बेटे का किरदार भी उन्होंने निभाया। एक तो अपनी टेलीविजन की जो राष्ट्रीय फिल्म है उसमें वो बाप बेटे बने हैं सूर्यवंशम मूवी में, फिर एक लाल बादशाह। और पुरानी फिल्मों की बात करें तो आखिरी रास्ता, देश प्रेमी, अदालत, इन सारी फिल्मों में बाप भी अमिताभ बच्चन, बेटे भी अमिताभ बच्चन। और एक फिल्म में तो इन्होंने अति कर दी थी, बाप का रोल भी अमिताभ बच्चन और दो जुड़वा बेटों का रोल भी दोनों अमिताभ बच्चन। ट्रिपल रोल इन महान, महान ही है ये बंदा। वैसे अमिताभ बच्चन के उनकी काफी फिल्मों में उनके फादर से काफी ऐसे डिफिकल्ट से रिलेशनशिप रहे हैं, या फादर के किरदार की वजह से उनको काफी कुछ सहना करना पड़ा। उस बारे में भी करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली.

शराबी फिल्म का गाना, वही फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन के किरदार विकी की जिंदगी के तंबू तीन बंबुओं पे खड़े होते हैं। शायरी, शराब और आप, ये आप इसमें है मुंशी फूलचंद, जो ओम प्रकाश जी प्ले करते हैं, जिन्हें अमिताभ बच्चन का किरदार फादर फिगर मानता है। वो इसीलिए बिकॉज उनके जो फादर है इन द फिल्म, जो प्राण साहब प्ले करते हैं, वो बहुत ही रईस बिजनेसमैन है। उनको पैसे कमाने से फुर्सत ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है बच्चे के लिए, तो बच्चा इग्नोर होके शराब पीना शुरू कर देता है। अमिताभ बच्चन साहब की बहुत सारी फिल्मों में उनके जो फादर के साथ रिलेशनशिप रहे हैं इन द फिल्म, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं, लेकिन बच्चन साहब ने वो रोल क्या एफर्टलेसली प्ले किए हैं। जैसे त्रिशूल मूवी भी, जहाँ पे वो बाप का बदला नहीं माँ का बदला लेते हैं बाप से, संजीव कुमार प्लेड हिज फादर ना। दीवार फिल्म में भी द काइंड ऑफ रिलेशनशिप ही हैड विद हिज फादर, व्हाट ही थॉट अबाउट हिज फादर, यू नो, सत्यन कपूर जी उनका फादर प्ले करते हैं और उनके साथ जो भी होता है फिल्म में, अपनी फैमिली को वो अबैंडन करके चले जाते हैं। वो जो अबैंडन ह्यूमिलिएटेड बेटे विजय का रोल अमिताभ बच्चन साहब ने निभाया है ना भाई, हैट्स ऑफ। देन आई थिंक एक और फिल्म जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप फादर सन का दिखाया गया है, वो है शक्ति फिल्म, जिसमें फादर प्ले करते हैं दिलीप कुमार साहब और बेटे अमिताभ बच्चन, वो भी बहुत सही है। चलिए इसी फिल्म का ये सही सा गाना भी सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो मिस्टर विपुल, मैं से बोल रहा हूँ। आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स। तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
3: इनबॉक्स चाहिए, इनबॉक्स कैसा मतलब?
4: मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा। अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
3: नहीं नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
4: हाँ बताइए।
3: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
4: नहीं वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
3: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
4: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
3: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना, अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
4: बिल्कुल,
3: से कम मुझे
4: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: जा कहाँ रहा है?
4: नहीं वो जा कहाँ रहा है, जा यहीं रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
3: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको?
4: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
3: यार क्या बात कर रहा हूँ, मतलब
4: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं आप, कंपनी को जरूरत है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
3: चल
4: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था, सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए, सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
3: बिल्कुल
4: क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
3: हेलो
4: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
3: आपको से फोन मत करियो, मैं इनबॉक्स बना दूंगा, दिमाग खराब कर दिया।
4: क्या क्या क्या क्या यार, बात सुनिए आप मेरी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बार विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

अमर अकबर एंथनी फिल्म का ये गाना, सुपर्ब फैमिली ड्रामा जिसमें पूरा परिवार बिछड़ जाता है। और अक्सर इस फिल्म में ना ये जो बच्चे खोने वाला दोष है ये माँ पे निरूपा रॉय जी पे मर दिया जाता है कि हर फिल्म में बच्चे खो देती थी। हेलो, बाप के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता है? जो बाप का रोल प्ले करते हैं प्राण साहब इन द मूवी, वो बच्चों को पार्क में अकेला छोड़ के चले जाते हैं। चलो सिचुएशन ऐसी होती है, गुंडे उनके पीछे पड़े होते हैं, बट बच्चों को पार्क में अकेला कौन छोड़ के जाता है? इसीलिए तो इधर उधर हो जाते हैं तीनों बच्चे, सब बिछड़ जाते हैं। अच्छा, एक और मूवी थी 1965 की, वक्त, जिसमें पूरा परिवार

खड़ जाता है. वेल दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक. लेकिन उसमें भी जो फादर का रोल बलराज सानी प्ले करते हैं उनको ऐसा दिखाया जाता है कि उनको खुद पे ऐसे बहुत विश्वास होता है, वो डेस्टिनी में, टाइम में, किस्मत में, इन सारी चीजों में ऐसा बिलीव नहीं करते हैं. और फिर उनके साथ वक्त अपना खेल खेल जाता है. खैर, इस फिल्म का एक गाना है जो अक्सर शादियों के लेडीज संगीत में फादर्स या दादाजी नाना जी की परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जाता है, जहाँ वो अपनी शरीके हयात, अपनी हमनशी, अपनी जहर अजबी की तारीफ करते हैं. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ. इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu. सुनते रहिए मिर्ची.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

एक और फादर चाइल्ड रिलेशनशिप जिसको हिंदी फिल्मों में बहुत एक्सप्लोर किया गया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये एक्चुअली थोड़ा सा एक कॉन्ट्रोवर्शियल टैबू सब्जेक्ट है, विच इज इललेजिटिमेट यानी कि नाजायज बच्चा एंड फादर। अभी देखो यूजुअल ड्रिल क्या होता था पुरानी फिल्मों में कि हीरोइन जो है या वुमन कैरेक्टर जो है वो अनइंटेंशनली प्रेग्नेंट हो जाती थी और फिर वो क्लासिक क्लीशे डायलॉग आता था, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, एंड जो फादर है ही वुड चिकन आउट या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, या अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता भी था तो छुप छुप के, और देयर वुड बी सम अदर गुड मैन जो इस वुमन से शादी कर लेगा, बच्चे को एक्सेप्ट कर लेगा, उनको प्यार परवरिश प्रोटेक्शन देगा। प्रोटेक्शन इज अ रॉन्ग वर्ड आई थिंक आई यूज्ड, मतलब उनको सेफ रखेगा, उनके लिए प्रोवाइड करेगा। बट देयर इज दिस वन मूवी जिसमें इस सब्जेक्ट को इतना ब्यूटीफुली ट्रीट किया गया है ना, इट इज सो हार्ट वार्मिंग एंड ओवरवेलमिंग एज वेल। ये है 1983 की मूवी मासूम। हैट्स ऑफ टू मासूम फिल्म की पूरी टीम। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: ये हिंदी फिल्मों में जितनी भी ऐसी फिल्में आई है ना जहाँ पे पिताजी प्यार के दुश्मन हो गए, उन सारी फिल्मों की बाप फिल्म पता है कौन सी है?
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: इन सारी फिल्मों की बाप फिल्म है द आइकॉनिक कल्ट क्लासिक टाइमलेस मुगले आजम। और उसमें वो जो प्यार के दुश्मन पापा का रोल निभाया है ना पृथ्वीराज कपूर जी ने, हैट्स ऑफ, क्या एक्टिंग है उनकी, क्या आवाज है उनकी। वो मतलब वो प्यार के दुश्मन होते हैं तो भी आप उनसे रिलेट करते हो, खास करके जब वो कहते हैं कि बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं अपने उसूलों के गुलाम हैं,
1: ऐसा ही कुछ होता है।
0: मतलब वो एक शहंशाह भी हैं और एक वो बाप भी हैं, उसका जो उन्होंने पोर्ट्रेयल किया है ना ऑसम। और वो एक बात जो अनारकली को कहते हैं, वो एक जो डायलॉग है वो सुनते हैं,
2: अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे।
0: ओए होए होए होए, गूज़बम्प्स। किसी प्रेम कहानी में अगर किसी पापा ने विलन प्ले किया है ना तो इन्होंने किया है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू।

जॉनी, मेरा नाम, मूवी का नाम, मेरा नाम है चारू। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स ऑन मिर्ची। और ये जो मूवी थी ना जॉनी मेरा नाम, इसमें जो हेमा मालिनी जी का किरदार रहता है वो अपने लॉस्ट फादर को ढूंढ रहा होता है। और पुरानी फिल्मों में बहुत कम ऐसा हुआ है कि बाप बेटी के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया हो, पोर्ट्रे किया गया हो। ज्यादातर बाप बेटा ही होता रहता था। अच्छा, दो फिल्में जो मुझे डिस्टिंक्टिवली याद आ रही है ना, जहाँ पे बाप बेटी के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया है, और ये दोनों फिल्में ऋषिकेश मुखर्जी की हैं। एक तो 1969 की आशीर्वाद, जिसमें अशोक कुमार फादर प्ले करते हैं और अपनी बेटी के बचपन में ही वो उससे अलग हो जाते हैं क्योंकि एक जुर्म में उनको जेल हो जाती है। फिर जब वो जेल से बाहर आते हैं तो अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। दूसरी फिल्म 1967 की अनुपमा, जिसमें अनुपमा का रोल शर्मिला टैगोर ने प्ले किया है। इसमें इनके फादर के मन में इनके लिए बहुत कड़वाहट होती है बिकॉज इनको जन्म देते वक्त इनकी माँ गुजर जाती है, जिनसे फादर बहुत प्यार करते हैं। वैसे इस फिल्म के गाने भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। ये वाला सुन लेते हैं, हेमंत कुमार की कॉम्पोजिशन, कैफी आजमी का लिखा हुआ, लता मंगेशकर की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, ऑन मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yambala. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं?
2: आप कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास,
4: अरे यार
2: जैसा आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
4: हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
2: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
4: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है?
4: यार बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ूकू।
2: हेलो
4: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: नहीं है।
1: एक बार बचपन में ना मैंने हेयर बैंड लगाया हुआ था सर पे, तो मेरे पापा ने पता है क्या बोला, मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मेरे पापा ने बोला कि छोटे होते अगर हमारे पास भी ये होता ना तो देवानंद जैसा हेयर स्टाइल बनाना कितना आसान हो जाता। तो देवानंद साहब का वो जो पफ्ड हेयर स्टाइल था, आई थिंक पूरा 50s और मिड 60s तक, इट वॉज अ रेज। मतलब लड़कियां तो मरती थी उनके उस हेयर स्टाइल पे और लड़के उसे इमिटेट करने की कोशिश करते थे, जैसे कि मेरे पिताजी। मुझे याद है एक बार मेरे पापा टेप रिकॉर्डर पे गाने सुन रहे थे, तो एक गाना आया देवानंद का और मैंने अपने पापा के सर पे हेयर बैंड लगा दिया और बोला लो आप भी देवानंद बन गए। वो गाना सुनते हैं ना यहाँ पर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

जरा ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mercy, New York. It's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी हिंदी फिल्में और उनके बाप। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई कितने अलग अलग तरह के फादर्स के किरदार हुए हैं हिंदी फिल्मों में। गरीब मजबूर बाप, उसूलवादी बाबूजी, अमीर घमंडी डैड, प्यार के दुश्मन पिताजी, या वो बाप जिनके लिए विलन से बदला लिया जाता था। और कितने अमेजिंग एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने ये किरदार प्ले किए हैं। कुछ पॉपुलर नाम लूं तो AK हंगल साहब, नासिर हुसैन, मनमोहन कृष्ण, ओम प्रकाश जी, उत्पल दत्त जी, डेविड, या अजीत साहब, कई बार विलन पापा भी होते थे ना, या फिर विलन प्लस कॉमिक प्लस कैरेक्टर रोल्स वाले कादर खान साहब, जीवन साहब, या और भी ऐसे बहुत सारे नाम है। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम एंड हैट्स ऑफ टू रियल फादर्स जिनसे शायद ये किरदार कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हो। वो रियल फादर्स जो बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, थक भी जाए तो आह भी नहीं भरते। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

कहते हैं हमारे माता पिता के हमारे लिए जो सैक्रिफाइसेस होते हैं कुछ तो हमको दिखाई दे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हम समझ ही नहीं पाते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जैसे कि ये तो हमको दिख जाता है कि त्योहार पे सबने अपने लिए नए कपड़े खरीदे, बस पिताजी पुराना कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, लेकिन घर के बाहर वो हमारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करते हैं ये हमको नहीं पता चलता। कई बार हमारी सब जरूरतें वो पहचान लेते हैं, पापा कुछ कहे बिना ही सब जान लेते हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। एक और बहुत अच्छी लाइंस मैंने पढ़ी थी कहीं, मुझे रख दिया छांव में, खुद जलते रहे धूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। और ये एक और शेर है, उनके होने से बख्त होते हैं, बख्त मतलब नसीब, अच्छे भाग्य, उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। सभी लविंग फादर्स के लिए बहुत सारी खुशियां और अच्छी सेहत की कामना करते हुए मेरे यानी कि चारू की तरफ से है बाय। और किसी भी वजह से अगर आपके फादर आपकी लाइफ में नहीं है, जैसे मेरे पिताजी बहुत सालों से स्वर्ग में आराम फरमा रहे हैं, तो आपको जादू की जप्फी है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, अब होती है मुलाकात जल्दी यही मिर्ची पर।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: मैडम गुड इवनिंग
1: हाय
2: बैंक से बोल रहे हो ना हमारी नई स्कीम आई है मैडम ताजी स्कीम है बढ़िया स्कीम है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
1: तो सब्जी बेच रहे हैं या लोन के
2: पहले सब पहले सब्जी बेचता था
1: अगर अगली बार फोन आ गए ना
2: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर दो
1: हेलो
2: मैडम अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे
3: प्रीति मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए अपने ऊपर पड़ जाती है यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आपका मुर्गा बन गया
2: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है
3: प्रीति ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं
1: नहीं
3: से सॉरी
1: सॉरी नवीन आई एम सॉरी
3: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को
1: कुकड़ू को
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na virtuala burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello, Mr. Vipul, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
1: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
1: नहीं नहीं बात तो सुनो भाई साहब
2: हाँ बताइए
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
2: नहीं वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
2: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
1: बहस वाली बात नहीं मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
2: बिल्कुल,
1: से कम मुझे
2: बिल्कुल,
1: मालूम
2: से, होना बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जा कहाँ रहा है
2: नहीं वो जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
2: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
1: यार क्या बात कर रहा है मतलब
2: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
1: चल
2: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
1: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार
1: आपको से फोन मत करियो मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
2: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात एक बार विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

मुझसे ना हो पाएगा। कौन बोला

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: चलिए जानते हैं कि डिप्रेशन को हम कैसे हरा सकते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं डॉक्टर श्रेया के साथ।
1: डॉक्टर?
3: हाँ, क्योंकि सिस्टर श्रेया तो हैं, लेकिन मैंने रियलाइज किया बात करते वक्त आपसे कि हर चीज को सॉल्व करने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है हमारी जिंदगी में। तो अगर कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार है तो पैरासिटामोल दे देते हैं, हड्डी टूट गई तो हम एक ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं। हर बीमारी के लिए एक डॉक्टर होता है। तो सोल के लिए किसके पास जाएं, माइंड के लिए किसके पास जाएं, मन की डॉक्टर के लिए हम आपके पास आए हैं। तो मन की जितनी भी पीड़ाएं हैं उनके लिए हम डॉक्टर श्रेया के पास आ जाए हैं।
1: बड़ी अच्छी बात है कि आपने मन की पीड़ा को एक्नॉलेज तो किया। यू नो, यू सी, अगर हम फिजिकल पेन होता है ना, कभी भी उसको चलाते नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्या है वो तो पता होना चाहिए ना। अगर हमारे सर में दर्द है, भले हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, पर जैसे आपने कहा, हम क्रोसिन तो लेंगे, एवरी 6 आवर्स लेंगे। मतलब पेन एक साइन होता है कि आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है। पेन बीमारी नहीं होती, लेकिन पेन एक मैसेंजर का काम करता है कि आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। और इमोशनल पेन हमें इतना होता है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, अंदर में डिस्कम्फर्ट है, अंदर में इमोशनल पेन है, पर हम कहते चलता है, ऐसा ही तो है, सबको ही तो होता है, जिंदगी ऐसी तो होती है,
3: तो उसके बारे में कुछ करते नहीं है।
1: उसके बारे में कुछ करते नहीं है, और जब किसी चीज के बारे में कुछ करते नहीं है तो वो बढ़ता है।
3: बिल्कुल,
1: कैविटी है, आप उसके बारे में कुछ करेंगे नहीं तो वो कहाँ तक पहुँचाएंगे, रूट तक तो जाएंगे ना।
3: बिल्कुल।
1: तो केवल दर्द को एक्सेप्ट करने से दर्द हील नहीं होता है, उसको एक्नॉलेज करके उसके लिए कुछ करना पड़ता है।
3: वाह, क्या बात की आपने।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर आपको सेल्फ डाउट होता है तो उसे कैसे डील किया जाए?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो चल रही है आसपास के माहौल में, आप जिससे भी बात करें, जिधर देखें, अखबार पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, रेडियो पे सुनें, आपको AI का बहुत अभी बोलबाला है। लेकिन बहुत लोगों से जब मैं बात करता हूँ, एक डर है कि ये तो मेरी नौकरी ले लेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं करता हूं आज, ये AI कर लेगा तो मेरी तो जरूरत रहेगी नहीं। ऐसे भय के माहौल में जो मैंने क्रिएट भी नहीं किया, मेरा उस पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन फॉर व्हाटएवर रीजन वो मेरे पेट पे लात मार रहा है। ऐसे माहौल से गुजरने के लिए जब आप उससे बात करते हुए, लेट्स से मेरे पास कोई आया, मैं उसको मोटिवेट कर रहा हूँ कि कोई बात नहीं यार, अपस्किल करते हैं, कुछ और करते हैं, नई चीजें सीख लेते हैं। लाइक जैसे मेरा फेवरेट एग्जांपल होता है कि 80s में कंप्यूटर्स आए थे, तो कंप्यूटर आने के बाद इंसान खत्म थोड़ा ना हो गए। तो ये AI जो है, हमको इसको भी सीखना पड़ेगा। तो इन ईरा जहाँ पे आपने एक बोला कि जो होता अंदर होता है वो तो ठीक है, लेकिन ये बाहर हो रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। और कुछ लोगों को लगता है ये स्किल हमारे बस की बात नहीं है, तो इस भय से कैसे आगे बढ़ें? क्योंकि अगर मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या करूं?
3: ये चीज हमने कोविड के दौरान भी बहुत देखी थी, जहाँ हम सबको अपनी स्किल्स को अडेप्ट करना पड़ा था।
2: जी,
3: चाहे वो एक टीचर था, माना एक सारा जमाना ही टेक्नोलॉजी का आ गया। सारे सेशंस जूम के द्वारा हो रहे थे, जी मीट, जूम, ये नई चीजें थी। लेकिन क्योंकि वो इतना फास्ट हुआ, हमने अपना कम्फर्ट जोन तोड़ा थोड़ा सा, टीचर्स ने भी वो स्किल सीखने की कोशिश करी जो जितना सीख सकता था। अब इसमें दो बातें होती हैं, जो नया स्किल सेट है उसको सीखना, जो आपने कहा अपने को अपस्किल करना, कंफर्ट जोन को तोड़ना, जो कभी भी इजी नहीं होता। एक चीज हम सब कहते हैं कांस्टेंट है, वो चेंज। लेकिन उस चेंज के साथ अपने को चेंज करना और अपने कम्फर्ट जोन को तोड़ना, इट इज नेवर वेरी इजी। एक चाय छोड़ना भी किसी को इजी नहीं लगता है। उसका कारण है, व्हेनेवर यू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, कुछ ना कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। आज आप एक चाय भी छोड़ना चाहेंगे तो उसमें भी अगर समझो मैंने आज पढ़ा कि ये चाय मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे छोड़नी चाहिए, तो वो केवल एक थॉट काफी नहीं होता। फिर जब आप छोड़ेंगे तो बहुत विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, जैसे आपको सर में दर्द होगा, आपको थकावट महसूस होगी, आपको उतना फ्रेश फील नहीं होगा। और जब ये सब कुछ होगा तो आसपास वाले लोग भी आपको कहेंगे क्या जरूरत है छोड़ने की। सो वी रियलाइज कि एक हैबिट को चेंज करना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, इवन दो वी अंडरस्टैंड कि वो 10-20 दिन की बात है। 10-20 डेज के बाद कोई ग्रीन टी पिएगा, कोई कुछ पिएगा, फिर वो वाली चीज के हम आदती हो जाएंगे और फिर वो विड्रॉल सिम्टम्स भी खत्म हो जाते हैं। तो एक चीज होती है डिटर्मिनेशन, कोई नया स्किल सीखने के लिए भी थोड़ा डिटर्मिंड थॉट चाहिए, थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए, थोड़े विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, उसको ओवरकम करके हम सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीज हमें सीखने नहीं देता है वो उससे ज्यादा जो चैलेंजिंग है वो है हमारा कमजोर मन। भय AI का नहीं है, भय नौकरी छूटने का नहीं है, भय कमजोर मन की निशानी होती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Problems ko deal karne ka tarika janiye ab.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अगर मन ही सब कुछ है, मन ही का प्रॉब्लम है, तो मन को चेंज करते हैं।
4: तो एआई आने में सबको क्यों नहीं नौकरी का डर लग रहा है? मेजोरिटी तो कहीं ऐसे भी हैं कि कहते हैं अब हमारा काम इजी हो जाएगा, ये वाला काम एआई कर लेगा। प्रॉब्लम तो फिर वही आ जाती है ना कि अगर ये चीज प्रॉब्लम है तो वो सबके लिए प्रॉब्लम होनी चाहिए, पर प्रॉब्लम माइंडसेट है ना। वो सिचुएशन चैलेंज या टेक्नोलॉजी कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक लाइन हमेशा याद रखना, टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड सर्वेंट बट अ वेरी बैड मास्टर। अगर आप टेक्नोलॉजी के गुलाम बन जाएंगे या टेक्नोलॉजी से डरने लगेंगे, आज एआई नहीं था तो भी थोड़े समय पहले बहुत ले ऑफ्स हुए थे कि नहीं हुए थे?
3: बिल्कुल।
4: कंपनीज डाउनसाइज कर रही थी, आपके पास स्किल सेट था, टैलेंट था, डिग्री थी, तो भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि मॉर्निंग में पहुंचते थे और मिड मीटिंग में उनका ईमेल आ जाते थे कि आपको निकाल दिया गया है, एंड फॉर व्हाटएवर रीजंस। तो अनसर्टेनिटी का पीरियड तो है ही, पर उसमें कोई कहता है अच्छा एक दरवाजा बंद हुआ है दूसरा खुल जाएगा, ऐसे भी लोग आपको मिलते हैं।
3: बिल्कुल
4: मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, बिकॉज उनको पता है कि जो भविष्य है वो बनना तो वर्तमान से ही है। फ्यूचर तो कुछ नहीं है, भविष्य वर्तमान की परछाई है। अगर आपका वर्तमान ठीक है तो भविष्य भी ठीक हो जाएगा, एक दरवाजा बंद है दूसरा खुल जाएगा। कोविड में हमने देखा कहीं डायरेक्टर्स थे, कोई जॉब नहीं मिल रही थी, उन्होंने कहा हमने कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। किसी ने सब्जी बेचनी शुरू करी, किसी ने कोरियर का काम करना शुरू किया, किसी ने जूम पे पढ़ाना शुरू किया। वो लोग थे जिन्होंने नेगेटिव सोच करके डिप्रेशन में नहीं गए, उन्होंने कहा अच्छा अब क्या कर सकते हैं। दूसरा कोई कहेगा अगर मेरी नौकरी छूटी है तो चिंता होना तो
3: लाजमी है।
4: अब चिंता होना अगर लाजमी है, जायज है, तो चिंता करते करते एक दो हफ्ते के बाद आप किस में चले जाएंगे?
3: डिप्रेशन में।
4: फिर डिप्रेशन होगा, फिर एनवायरनमेंट घर का खराब होगा, और ऐसे व्यक्ति को नई जॉब मिलेगी? नया स्किल सेट वो सीख सकता है, अपने को अपस्केल कर सकता है? नहीं, इट इज वेरी चैलेंजिंग। लेकिन ये फेथ होना कि ठीक है चेंज हुआ है, कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा पर करेंगे, फेथ भी तो अपने पर होना चाहिए ना। पर एक्चुअली हम सबका फेथ, सेल्फ रिस्पेक्ट, फेथ, कॉन्फिडेंस इतना कम है कि बाहर थोड़ा सा हिलता है, वो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स होता है ना, वो बाहर थोड़ा हिलता है, अंदर ज्यादा हिलता है।
3: बिल्कुल, धक धक करता है ऐसे।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: स्व सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणपतये नमः।
1: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे लोगों के सपोर्ट की बात करेंगे हम अब।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: व्हाट डू यू डू जब आपको काम रोज करवाना है और काम के आड़े आ रहा है, तो प्यार मोहब्बत दया तो नहीं लेकिन
4: दया भी जरूरी है। कंपैशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। कोई दर्द में है कि कंपैशन कोई शब्द नहीं है, कंपैशन एक वाइब्रेशन है। कंपैशन का मतलब क्या है, आप मन में उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा नहीं हो रहे हो। एक है कि मैं मन में सोच रहा हूँ इसका काम मैं ही करता रहूँ, इसको मैं ही चलाता रहूँ, अभी इसको डिप्रेशन है तो घर में बैठे,
3: ये आ जाता है कभी कभी।
4: तो ये आपने क्या दिया उसको, आप दर्द में गए और आपका जो वाइब्रेशन था वो नेगेटिव था। व्हेन वी से कंपैशन, इट इज नॉट अ वर्ड। ये वर्ड बोलने बहुत अच्छे लगते हैं,
3: एक्शन।
4: कंपैशन इज वाइब्रेशन।
3: वाइब्रेशन
4: आप मन में सोचते हैं, ठीक है ना, जो आज इसके साथ हो रहा है वो कभी जीवन में मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता है, कल को अगर ये मेरे साथ हो, हाउ डू आई वांट पीपल टू ट्रीट मी
3: वेल।
4: सो द वे यू वांट पीपल टू ट्रीट यू, जस्ट ट्रीट पीपल दैट वे, द एनर्जी दैट यू सेंड आउट टुडे इज गोइंग टू कम बैक टुमारो। ये बेस्ट तरीका है जीवन जीने का। जो आप चाहते हैं, जैसे हम हमेशा कहेंगे आपसे कोई कैसे बात करे, तो कहेंगे प्यार से। हम औरों से कैसे बात करें,
3: फटकार से नहीं, प्यार से।
4: पर उनको तो प्यार की भाषा ही समझ में नहीं आती, यू नो, दैट इज हाउ वी जस्टिफाई। हमें आती है लेकिन उनको नहीं आती। सबको आती है।
3: कोशिश करके देखो।
4: हाँ, मना जो दर्द में है उसको टाइम ज्यादा लग सकता है, जैसे जो बीमार है वो बीमार है ना, तो उसको खाना खाने में टाइम थोड़ा सा ज्यादा तो लगेगा। आज आपको बुखार है तो आपको पानी का ग्लास भी उठाना भारी लगेगा,
3: बिल्कुल,
4: तो वो काम करना उसके लिए थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होगा। पर आई हैव रियलाइज्ड एंड आई, बिकॉज हम लोग तो बहुत ऐसे लोगों से मिलते हैं उस डिफिकल्ट पीरियड में, अगर कोई उनको सपोर्ट करता है, कोई उनको हेल्प करता है, कोई अपने वाइब्रेशन को प्योर रखता है, थोड़ा चला तो जाता है, हर एक के जीवन से वो पीरियड आता है और चला जाता है, पर उस समय पर जो हम सपोर्ट करते हैं, यही तो है, यही तो वे ऑफ लाइफ है ना। कॉम्पिटिशन नहीं है, कोऑपरेशन है, हम इकट्ठे ही तो हैं।
3: अरे क्या,
4: हम सब यही तो चाहते हैं कि आप भी खुश, हम भी खुश, हम सब मंजिल पर एक साथ पहुंचे, यही तो जीवन जीने का तरीका था।
3: कि कॉम्पिटिशन नहीं है, कोऑपरेशन है,
4: शिफ्ट तो वही लेकर के आना है,
3: बिल्कुल।
4: तो ही तो फिर सामने वाले के दिल से दुआ निकलती है और वो दुआ आपको जीवन में बहुत सुकून का अनुभव कराती है, धन भी लेकर आती है। ऐसा नहीं है, जब हम किसी के प्रति रहम का भाव रखते हैं, वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ही काम करके आपको देंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर लोगों को सपोर्ट करो तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। ऐसे में आप ये करें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला आपको ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। इसको बोल दें नहीं होगा अगली बार, सॉरी विशाल यार। तो उस केस में आप एक पैटर्न अगर देखते हैं तो कभी ना कभी तो मैं जानता हूँ बोलेंगे ये सही नहीं है, लेकिन गुस्सा लाजमी है। ये वो है ना, एक बॉलर आ रहा है, 5 बॉल छक्के मार दिए, भाई तेरे को बोल रहा हूँ बाउंसर नहीं दे, यॉर्कर दे, यॉर्कर नहीं देगा तो फुल लेंथ डिलीवरी या गुड लेंथ डिलीवरी, वो छक्का मारेगा। तो व्हाट डू यू डू इन अ केस लाइक दैट व्हेन यू आर लीडिंग अ टीम। धोनी फील्ड में है, वो बोल रहा है तुमको, बोल रहा हूँ मैं ठीक से बॉलिंग कर, अब आप नहीं करोगे तो छक्के पड़ेंगे, सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं हो रहा हमारा भी नुकसान हो रहा, बिकॉज इट्स अ टीम गेम। क्योंकि हर स्पोर्ट जो है इंडिविजुअल स्पोर्ट।
4: फिर धोनी क्या करता है,
3: धोनी जाता है उससे बात करता है, भाई क्या कर रहा है,
4: फिर वो नहीं समझता है, फिर वो क्या करता है,
3: बोले भाई तू बॉलिंग नहीं करेगा दूसरे बॉलर को।
4: एब्सोल्युटली, बस वही तो करना है, वो अपना काम थोड़ी ना छोड़ता है। किस चीज के लिए वो फेमस है,
3: कामनेस, एक्चुअली
4: डोमिनेंस है उसकी उस चीज के ऊपर, काम है। ठीक है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाला सच में डिप्रेस्ड है, मतलब वो चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहा है, कि जैसे आपने कहा वो आपका एडवांटेज ले रहा है। ये परखने की शक्ति होनी चाहिए। हो सकता है सामने वाला सच में दर्द में है, तब तो हमें उसको सपोर्ट करना है। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं, सामने वाला थोड़ा सा क्लेवर होने की कोशिश कर रहा है, क्लेवर भी नहीं, श्रूड होने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास उतनी इंट्यूटिव पावर होनी चाहिए, उतनी परखने की शक्ति होनी चाहिए कि ये आपका एडवांटेज उठा रहा है। अगर वो आपका एम्प्लॉई है और उसके जीवन में कोई चैलेंज है, तो जरूरत बनती है कि उस समय हम उसको सपोर्ट करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके समझाने के बाद भी वो नहीं मान रहा है, वो एडवांटेज ले रहा है, वो आपको ग्रांटेड ले रहा है, तो जैसे वहां पर वो बॉलर चेंज करता है, काम तो नहीं छोड़ता ना, आपको गुस्सा करने की क्या जरूरत है। यू हैव गिवन अ रोल टू समबडी, वो नहीं परफॉर्म कर रहा है, आप चांस दे सकते हैं, देना भी चाहिए, एक बार दो बार तीन बार चांस देना भी चाहिए। फिर भी हम किसी के लिए कर्म तो नहीं कर सकते, हम गाइड ही तो कर सकते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Self-doubt isn't good. इसे कैसे डील करें? सुनिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: व्हाट डू यू डू जब आपको काम रोज करवाना है और काम के आड़े आ रहा है? बुरा तो उसमें भी लगेगा ना, चाहे उसको लगे और मुझे भी लगेगा कि यार मैं करवा नहीं पाया, मैं अच्छा लीडर नहीं हूँ, या उसको लगेगा क्या यार ये विशाल बड़ा बुरा इंसान है, इसने मुझसे चेंज करा लिया, मैंने काम नहीं किया, वो नहीं देख रहा वो। तो कर्म कहीं ना कहीं बंद तो रहे हैं आपके?
1: नहीं, दोनों दो तीन चीजें हैं इसके अंदर। एक तो पहले हमें सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए।
3: अच्छा,
1: देखो दो चीजें अलग होती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक सेल्फ डाउट। इसलिए कोई भी कर्म बाहर करने से पहले उसको अंदर में चेक करना चाहिए कि आप ये किसी के साथ गलत कर रहे हैं या आप एक समय के बाद एक डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं। जब आपको कोई चीज चलानी है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, आश्रम है, हर चीज के कुछ रूल्स और डिसिप्लिन होते हैं। तो वो जो आपके लिए काम कर रहा है, आपने उसको रूल्स और डिसिप्लिन पहले से बताए हुए हैं, आज थोड़ी ना बताए हैं। जैसे किसी को आपने कहा हुआ है 26 डेज की अटेंडेंस कंपलसरी है या ये है या जो भी है, उसके बाद आपकी पे कट होगी, है ना। अब जब उसकी पे कट होती है तो आप उसके साथ गलत कर रहे हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, और आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो कुछ ना कुछ रूल्स तो बनने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि वो जो फलाना है उसने छुट्टी इसलिए ली थी क्योंकि उसको अचानक की कोई बड़ी बीमारी आ गई थी, तो अब आप फिर आप उसकी पे कट करते हैं तो आपको थोड़ा सा गिल्ट होगी। लेकिन तब आप एज अ लीडर आप समझते हैं कि नहीं, ये तो उसकी डिफिकल्टी का पीरियड है। सो एवरी टाइम द डिसीजन विल नॉट बी सेम। वो डिसीजन है, वो रोल है, लेकिन फिर भी दैट इज वाई मैंने जो कहा था कि कोई भी डिसीजन बाहर लेने से पहले एक रिश्ता अपने साथ होना चाहिए। वो चीज आपको कंफर्टेबल फील करानी चाहिए। अगर वो एक डिसिप्लिनरी एक्शन था और आपको लग रहा है कि वो क्लेवर होने की कोशिश कर रहा है, वो आपका एडवांटेज ले रहा है, तो आपके दिल नहीं खाएंगे।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अगर किसी को सिखाते वक्त हार्श हो जाए और उसे बुरा लग जाए तो इसमें हमें क्या करना चाहिए?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जी, मेरी बड़ी बेटी उस समय छोटी थी, एक ही बेटी थी, तो उसको साइकिल सिखाना था। तो मैंने कहा बेटा साइकिल के लिए हम पार्क में जाएंगे, और एक चीज मैं बता देता हूँ, मेरा ये मानना जब तक खून नहीं निकलेगा ना तुम साइकिल चलाना नहीं सीखोगी। बोली क्यों? सर क्योंकि जब आप गिरोगे तो थोड़ा सा खून आएगा, और उस समय मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा, साइकिल आपको खुद उठानी है, खुद चलना है। क्योंकि अगर आपको हमेशा ये महसूस रहेगा कि पापा तो हैं पीछे साइकिल पकड़ने के लिए, आप कभी साइकिल चलाना सीखोगे नहीं। तो उसके दिमाग में बैठ गया कि ही इज टीचिंग मी द हार्ड वे, बट साइकिल चलाना उसको आ गई। बट फॉर वट एवर रीजन शी इज हेल्ड दैट इन हर माइंड, दिमाग में, कि मेरे पापा कठोर हैं, वो चाहते हैं कि मुझे पनिशमेंट मिले तब मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगने लग गया कि कई बार मैं जब उससे बात करता हूँ सामने से जो रिएक्शन आता है वो ज्यादा होता है देन वॉट इज needed for it.
4: So basically क्या होता है, we want to prepare our children for failures in life. जरूरी नहीं होते हैं failures होते हैं, जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो जरूरी नहीं होता है कि हर बच्चा गिरेगा और हर बच्चे का खून निकलेगा। पर हम इतना तक उसको तैयार करना चाहते हैं कि वो गिव अप नहीं करे कि ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है, पर कोई बात नहीं, आप उठ करके फिर भी साइकिल चलाना सीख सकते हैं। तो हमारा भाव, हमारी इंटेंशन की प्योरिटी होती है कि हम हर हाल में कोई चीज कर सकते हैं, उतार चढ़ाव आएंगे, आप गिर भी सकते हैं, थोड़ा ज्यादा भी गिर सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, गिरने के बाद वो चीज छोड़ देते हैं। मैंने गाड़ी चलाई, पहला एक्सीडेंट हुआ, मैंने कहा मैं तो गाड़ी नहीं चला सकता, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मेरे से तो हो ही नहीं सकता। हाँ। फिर वो ऐसा बिलीव बैठ जाता है कि हम कभी भी वो चीज सीखते नहीं है।
3: बिल्कुल।
4: तो एज अ पेरेंट हम बिलीव क्या डालना चाह रहे होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बातें आएंगी पर आप कुछ भी कर सकते हैं। शायद हमारा तरीका ठीक नहीं होता तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ भी अगर जीवन में अचीव करना है तो सफर तो करना ही पड़ेगा। पर हमारा इंटेंट वो नहीं था, हमारा इंटेंट था कि जो जर्नी है वो हमेशा सीधी सीधी नहीं होती है, पीक वैली होती है जर्नी, लाइफ जर्नी भी तो ऐसी होती है ना, कुछ आपके अनुसार होगा कभी नहीं होगा, कहीं आप अप्लाई करेंगे एक्सेप्टेंस मिलेंगे, कभी कभी रिजेक्शन का लेटर भी आएगा। पर बच्चे, रिजेक्शन का लेटर का मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट स्मार्ट इनफ, रिजेक्शन का लेटर मतलब ये है आप उठो फिर से ट्राई करो, इस कंपनी में नहीं होगा दूसरी कंपनी में हो जाएगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, Mirchi Mornings पर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. The party has officially started. फिलहाल अभी तुम किचन में चाय चढ़ाकर टीम्स कॉल पे गुड मॉर्निंग एवरीवन बोलने वाले हो या फिर स्कूल ड्रॉप ऑफ के बाद सीक्रेटली गाड़ी में 5 एक्स्ट्रा मिनट साइलेंस एंजॉय कर रहे हो. आई सी यू. देसी एक्सपैट लाइफ जो है ना उसका अनऑफिशियल स्पॉट यही है कि इंडिया की टाइमिंग और अमेरिका की टाइमिंग दोनों को मैच करे, दोनों को बैलेंस करे और उसके बाद शाम को खाने में क्या खाना है इसके प्लान्स बनाए. आज हम करने वाले हैं थोड़ा गॉसिप, थोड़ा मस्ती, थोड़ा नॉस्टैल्जिया एंड बिल्कुल ही फ्री में तुम्हें ढेर सारा मोटिवेशन मिलने वाले और साथ साथ में मिर्चीदार बैंगर्स मिलने वाले एकदम गर्मा गर्म. फटाफट से मुझे फॉलो कर लो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं?
2: आप कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास,
4: अरे यार
2: जैसे आपके पास आया कि भी अगर आप खाली बैठे,
4: हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही? अरे भाई Hello? यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा।

0: तू बड़ा शरीफ आदमी है तो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है इस सर्विस में।
1: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें। अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू।
2: हेलो
1: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार। आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। मिर्ची फ्रेश माल,
4: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका।

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। ये है मिर्ची मॉर्निंग्स और आप टाइम मशीन में रिवर्स का गियर लगाने वाले हैं और चलने वाले हैं 1633 में।

जहां पर साइंटिस्ट गैलीलियो को ऑफिशियली फोर्स किया गया बोलने के लिए कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। फास्ट फॉरवर्ड टू 1815, नेपोलियन ने एम्परर की कुर्सी सेकंड टाइम छोड़ दी आफ्टर वाटरलू। 1897 में इंडिया के चपेकर ब्रदर्स ने ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर्स पे अटैक किया इन पुणे, एंड 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस लॉन्च्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक और पॉलिटिक्स की प्लेलिस्ट को थोड़ा सा रीमिक्स कर दिया। 1941 में ऑपरेशन बारबोसा चेंज्ड वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री, एंड 1986 में डिएगो मैराडोना ने वो लेजेंडरी और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हैंड ऑफ गॉड गोल मारा था, एंड फिर 1978 में प्लूटो का मून शारोन डिस्कवर हुआ था। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मुझसे कनेक्ट करना चाहते तो मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम अक्रॉस सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और एक्स पर एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे। बहुत रुकी है आज तू, पानी बन के खुद को बहने दे।
1: Boy, by the shop.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और चाय गर्म रखी है या नहीं रखी है पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म न्यूज लेकर आई हूँ। इंडिया की बैटिंग क्वीन स्मृति मंधाना ने एक और सिक्स सीधा हिस्ट्री के स्टैंड्स में मार दिया है। कैसे? शी इज बिकम द ओनली इंडियन टू फीचर ऑन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स लिस्ट। मतलब कि दुनिया कह रही है, एक्सक्यूज मी मैम, सेव सम अचीवमेंट्स फॉर द रेस्ट ऑफ अस। और बॉस, ये सिर्फ फोटो ऑप नहीं है, बल्कि इस साल के हाफ ए मार्क तक स्मृति हैज बिकम टीम इंडिया वुमेन्स लीडिंग रन स्कोरर इन T20 इंटरनेशनल्स, और ऊपर से कैप्टन बन के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उनका वुमेन्स प्रीमियर लीग टाइटल भी दिलाया है। मतलब कि लीडरशिप तो मिल ही रही है, साथ साथ में रन भी है, ऑरा भी है। एक्सेल शीट होती तो अभी तक ओवरलोड हो जाती, हैंग हो जाती। वैसे बिग मिर्ची स्टाइल सल्यूट टू स्मृति मंधाना, प्रूविंग दैट क्वाइट कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू वर्ल्ड नोटिस करता है बाद में। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो देयर, मैं हूँ प्रिसिला। तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग। जरा बारी आ चुकी है वेदर का हाल चाल जानने की। फिलहाल बाहर टेम्परेचर हो रहा है 64 डिग्रीज फारेनहाइट एंड द स्काई इज डूइंग द क्लासिक ड्रामा क्वीन वाले मूव्स एंड मेकिंग अस फील लाइक 66 डिग्रीज फारेनहाइट है। सुबह से लेकर 2 बजे तक क्लाउड्स जो है उनका फुल अटेंडेंस रहने वाला है। आज बॉलीवुड टाइप की बरसात नहीं होने वाली, लेकिन थोड़ा सॉफ्टली बरसात तो हो रही है। तो कैरी योर अम्ब्रेला विथ यू एंड हेयर स्टाइल ऐसा बनाना कि अगर बिगड़ भी जाए तो तुम मैनेज कर लो। हेड्स अप, ऐसे नेक्स्ट 24 आवर्स में 21 मिलीमीटर्स की बरसात होने वाली है, अनलाइक यस्टरडे जब पूरी तरह से ड्राई था, यानी कि 0 मिलीमीटर्स की बरसात थी। आज का टेम्परेचर रेंज देख लेते हैं, 64 टू 79 डिग्रीज फारेनहाइट है। फील होगा 65 से लेकर 76 डिग्रीज फारेनहाइट तक, बिकॉज ह्यूमिडिटी और सनलाइट मिलकर कुछ ऐसा तापमान फील करा रहे हैं। वैसे आज एक इम्पोर्टेंट बात भी है, फ्लड वॉच अलर्ट है विच इज इन इफेक्ट टिल 2 PM GMT। सो अगर आज तुम कम्यूट कर रहे हो, एरन है, द बेस्ट प्लान इज टू थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हाथ में लेकर चलना और पेशेंस। बेस्ट प्लान होगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा पेशेंस साथ में रखकर ही बाहर निकलना, और साथ साथ में अपना SPF 50++++ लगाना बिल्कुल मत भूलना। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड फिलहाल सुनते रहो मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स का वो टाइम जहाँ पर तुम्हें मिलती है अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले स्विट्जरलैंड में टॉक्स के दौरान यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने एक लाइट मोमेंट क्रिएट किया जब उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग हैं, एक इंडियन है और एक पाकिस्तानी है। फिर रिवील किया कि इंडियन उनकी वाइफ है और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जिस पर रूम में काफी लाफ्टर भी हुआ। नंबर टू पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर स्ट्रॉन्ग कॉमेंट्स दिए हैं और वाटर सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी इशू बताया है। इंडिया की साइड से पहले ही कहा गया है कि ट्रीटी पर उनका करंट पोजीशन अनचेंज्ड है। एंड नंबर थ्री पर क्रिकेट से रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से मूव कर सकते हैं और राजस्थान रॉयल्स के साथ टॉक्स चल रही है उनकी, और रूमर्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिर्ची पॉसिबल है कि ट्रेड कॉन्वर्सेशन भी हो जाए। क्रिकेट फैंस फिलहाल डिटेक्टिव मोड ऑन करके बैठे हुए हैं। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का थ्री विद मी प्रिसिला। मुझसे शो के अलावा बात करनी है तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल name, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर मेरा number है 9033 Mirchi, that's 9033647224. Stay tuned and stay hot.

0: Milci. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Oh, madam, good evening.
1: Hi.
2: Bank se bolle ho na, hamari nahi scheme hai ye. Madam, taazi scheme hai, badhiya scheme hai. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
1: है। तो सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
2: पहले सब्जी बेचता था।
1: अगर अगली बार फोन आ गए ना।
2: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर।
1: हेलो
2: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा। वे
3: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
1: है।
2: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
3: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
1: नहीं,
3: से सॉरी
1: सॉरी नवीन, आई एम सॉरी।
3: प्यार से बोल दीजिए कुकड़ो को।
1: कुकड़ू गो।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning guys, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings पर गर्मा गर्म entertainment. Report के हिसाब से Taylor Swift may have invited Blake Lively to her wedding as a way to smooth things over and close the chapter on their reported friendship drama. Buzz ये भी कह रहे हैं कि tensions allegedly तब start हुए जब Taylor reportedly didn't love getting pulled into Blake's legal situation. और private texts के एक nickname moment ने भी internet को detective बना दिया है. Honestly, it's pretty relatable. हर देसी फ्रेंडशिप में एक ऐसा फेज आता है जहाँ पर पहले रील्स भेजी जाती है धड़ाधड़ फिर उसके बाद सीन जोन पर ही छोड़ दिया जाता है. उसके बाद ये सारी प्लानिंग होती है, यार अगले महीने मिलते हैं, अगले महीने पक्का प्लान बनाते हैं. इसीलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी कभी क्लोजर कम्स थ्रू कॉन्वर्सेशन. अगर दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन ही बंद हो जाएगी तो क्लोजर कैसे आएगा. एंड स्पीकिंग ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स एंड वेडिंग्स, तनिष्क लेकर आए तुम्हारे लिए फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पर तुम अपना पुराना गोल्ड ले जाकर उसको एकदम स्टाइलिश डायमंड में एक्सचेंज कर सकते हो. और उस गोल्ड को एक्सचेंज करने के लिए तुम्हें $5 पर ग्राम एक्स्ट्रा भी मिल रहा है. और अगर तुम्हारा पुराना वाला गोल्ड 9 कैरेट से ऊपर है तो एक्सचेंज कराने पर तुम्हें 0% डिडक्शन भी पे करना पड़ेगा, यानी कि कुछ नहीं पे करना है. ऑफ कोर्स कंडीशंस अप्लाइड है. फिलहाल मुझसे बातें करना चाहते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग मैं मिर्ची फैमिली, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब वो मोमेंट आ चुका है जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है, यानी कि अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू। और अब पता करते हैं कि तुम्हारे साथ आज तुम्हारे सेलिब्रिटी बर्थडे ट्विंस कौन कौन है। यू शेयर योर डे विद मेरिल स्ट्रीप, एक्टिंग की GOAT लेवल ऑफ एनर्जी। साथ साथ में यू हैव थलापति विजय, जो सुपरस्टार तो है ही, अभी रिसेंटली तमिलनाडु के CM भी बन चुके हैं। सिंगर स्क्वाड से यू हैव सिंडी लॉपर, ब्रूस कैंपबेल एंड रेडियो एंड टीवी फेस कार्सन डैली। मतलब आज अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो तुम ऑलरेडी ओवर अचीवर हो ही। वैसे बर्थडे वाले लोग सेलिब्रेट करो लाउडली, केक खाओ एक्स्ट्रा कैलोरी इसके साथ क्योंकि आज काउंट नहीं होती। और साथ में मुझे शाउट आउट भेजो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS इंस्टाग्राम और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स. रब सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट.
2: राज जोल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,200, $4,200 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते से अपवर्ड ट्रेंड ऊपर चले गए हैं. और इससे पहले और ऊपर जाएं, आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें, जिसमें 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड. आप आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी हिडन फी के, और 9 मंथ्स में इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं. आइए मिलके इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में विद द टीम ऑफ rajjewels.com. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू.
1: एंड देयर यू गो, गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट तो तुम्हें पता चल चुका है, लेकिन क्या तुम्हें पता है मुझसे इंस्टाग्राम और एक्स पर तुम बातें कर सकते हो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. और व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट करने के लिए 9033 मिर्ची इज द नंबर, दैट्स 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

है दिल तेरी चाल ढाल हाल बाल सब बवाल सब गजब तेरी चाल ढाल हाल बाल उफ़ो hips lips eyes thighs सब गजब

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello there, my Mirchi family. मैं हूँ Priscilla, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे Mirchi Mornings. और आप सुनने वाले हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है. सबसे पहले यूके प्राइम मिनिस्टर कियर स्टार्मर अनाउंस्ड दैट ही इज स्टेपिंग डाउन एंड सेड ही विल सपोर्ट अ स्मूथ ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट लीडर. दिस मींस द यूके कुड सी येट अनदर पीएम इन प्रीटी शॉर्ट स्पैन ऑफ इयर्स. And number two, per in Texas, an Indian origin home owner said he removed the Lord Ganesha idol after concerns raised during the home selling process. The story has sparked discussions online around personal expression, comfort, and housing experience. And number three, per Turkey's World Cup journey ended after FIFA's tie break rule came into play. Head to head results mattered before goal differences. यानी कि सिर्फ score नहीं, किससे हारे हो और किससे जीते हो वो भी कार्ड में काउंट होता है. फुटबॉल फैंस एवरीवेयर कलेक्टिवली सेइंग कि रूल बुक भी पढ़नी पड़ती है क्या. दैट्स इट फॉर मिर्ची मॉर्निंग्स पर मिर्ची आवर का 3 विद मी Priscilla. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
1: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
1: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
2: हाँ बताइए
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
2: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
2: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
1: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
2: बिल्कुल,
1: से कम
2: बिल्कुल, से, बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जा कहां रहा है
2: नहीं वो जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेज रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस हैं उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
2: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
1: यार क्या बात कर रहा
2: हूं
1: मतलब
2: नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
1: चल
2: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
1: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार
1: क्या
2: यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब सुनने वाले हो राशि जोन पार्ट वन।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: इरेज यानी कि मेष राशि, बॉस एनर्जी थोड़ी लो वॉल्यूम पर रखो आज। लेट पीपल कनेक्ट टू यू डायरेक्टली लाइक वाईफाई। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, बेटा दुनिया सेव करने निकले थे लेकिन पहले खुद फन तो कर लो। वीकेंड वाइब्स एक्टिवेट करो, चाय, फ्रेंड्स, फ्रेश एयर, ये सब कुछ चलने वाला है। लकी कलर फॉर यू इज पिस्टाशियो, लकी नंबर इज 28। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज सीईओ मोड ऑफ करो, टीम वर्क से ज्यादा माइलेज मिलने वाला है। जेंटल रिमाइंडर, हेल्पफुल पीपल आर नॉट सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। लकी कलर इज आइस मिंट, लकी नंबर इज 9। कैंसर यानी कर्क राशि, सन तुम्हारी साइड पे है, कॉन्फिडेंस फुल चार्ज करो, जो गोल पहले इम्पॉसिबल लग रहे थे आज उसको दोबारा से डीएम भेजो। लकी कलर इज सनराइज पीच, लकी नंबर इज 22। लियो यानी कि सिंह राशि, ड्रामा मत करो, कम बैक करो, चैलेंज को ट्रेलर समझो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आई एम गेटिंग बिग ब्रेक थ्रू एनर्जी फ्रॉम यू। लकी कलर इज गोल्ड, लकी नंबर इज 31। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, प्रोडक्टिविटी का प्रेशर कुकर ऑन है, जो काम करना है अब भी कर लो, और हाँ दूसरों के डाउट्स को रिसाइकल बिन में भी डाल दो। लकी कलर इज सिल्वर, लकी नंबर इज 19। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट वन। बाकी बची 6 राशियों को लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में, तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स। एंड ऑफ कोर्स मुझे जाकर फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: राशि जोन पार्ट टू लेकर आ चुकी हूँ मैं, बोले तो प्रिसिला और मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड लेट्स फाइंड आउट आज तुम्हारे सितारे क्या कह रहे हैं।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लिब्रा यानी तुला राशि, और स्टैक्ड लग रहे हैं, राइट? परफेक्ट। तुम चैलेंज मोड में बेस्ट काम करते हो। माइंडसेट को कॉफी पिलाओ थोड़ा सा। लकी कलर इज मलबरी, लकी नंबर इज 18। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, अगर किसी दोस्त का जीपीएस गलत डायरेक्शन पर ले जा रहा है तो डिलीवरी सॉफ्ट रखो, ऑनेस्टी स्ट्रांग रखो, फ्यूचर यू को थैंक यू मिलने वाला है। लकी कलर इज मिडनाइट प्लम, लकी नंबर इज 11। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, समवन सेइंग नाइस थिंग्स, सस्पिशियस मत हो जाओ। कभी कभी कॉम्प्लीमेंट स्कैम नहीं होते हैं, एक्चुअल में रियलिटी होते हैं, रिसीव देम विद ग्रेस। लकी कलर इज कॉपर कलर, लकी नंबर इज 25। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, हर मीटिंग तुम लीड नहीं करने वाले हो, एंड गेस व्हाट, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आज डेलीगेशन इज इक्वल टू सेल्फ केयर। लकी कलर इज फॉरेस्ट स्टील, लकी नंबर इज 4। Aquarius यानी कुंभ राशि, फन मोड को थोड़ा सा पैक करो एंड वर्क मोड को स्पॉटलाइट में लेकर आओ। एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखो, इंक्लूडिंग अपने खुद से। लकी कलर इज इंडिगो, लकी नंबर इज 37। Pisces यानी कि मीन राशि, मोटिवेशन का चार्जर मिल गया है, एनर्जी कंटेजियस है। तुम स्टार्ट तो करो और लोग तुम्हें फॉलो करते जाएंगे। क्रिएटर मोड अनलॉक हो चुका है तुम्हारा। लकी कलर इज रोज क्वार्ट्ज, लकी नंबर इज 13। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट टू। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। इंस्टा और एक्स पर मुझे ढूंढोगे तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो जी, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और बस ऐसे ही मेरे जाने का टाइम आ चुका है, यानी कि मिर्ची मॉर्निंग्स पर से मुझे अब अलविदा टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन जाने से पहले कुछ बातें करना तो बनता है, राइट? सो इंडिया के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने एक सिंपल बट सॉलिड बात बोली है अबाउट फुटबॉल ड्रीम्स। जब लोग पूछते हैं इंडिया फीफा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं है, उनका आंसर था पहले रेगुलरली एशियन कप में होना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन पहले और स्पॉटलाइट बाद में मिलेगी। एंड ऑनेस्टली क्या ही लाइफ लेसन है ये जो एक्सपैट लाइफ है, वो भी तो यही करने में गुजर जाती है। पहले ड्राइवर्स लाइसेंस लो, फिर क्रेडिट स्कोर लो, फिर कॉस्को मेंबरशिप लो, फिर दुनिया जीतने निकलते हैं। कभी कभी हम डायरेक्टली फाइनल डेस्टिनेशन देखते हैं और भूल जाते हैं कि गूगल मैप्स भी बोलता है कंटिन्यू स्टेट फॉर 500 माइल्स। सो आज का मिर्ची टेक अवे है, बड़ा ड्रीम रखो लेकिन स्मॉल विंस को भी हाई फाई देते हुए आगे बढ़ते जाओ, दैट्स प्रीटी इम्पोर्टेंट। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और अब मेरे जाने का टाइम है, जाते जाते तुम्हें याद दिला दो कि मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम और एक्स पर, वहां पर हम खूब गप्पे मारने वाले हैं। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर अगर मुझसे कनेक्ट करना है तो मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647 244. Stay tuned and stay hot.
2: Yeah, here we go again. Authentic, original, and better than our rivals.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू।

रीमिक्स वाला ओरिजिनल गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और जिस ओजी गाने की हम बात कर रहे हैं ना, इसके पता नहीं कितने रीमिक्स एंड रीमिक्सेस बने हैं। एक तो वेब सीरीज आई थी ना जिसमें भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर थे, रॉयल्स करके, उसमें भी ये गाना यूज हुआ था। लेकिन द मोस्ट प्रोमिनेंट रीमिक्स इस गाने का वॉज रिलीज इन 2002-2003, डीजे अकील का रीमिक्स। और ऑडियो से ज्यादा इसका वीडियो आपको शायद याद होगा 90s के बच्चों को खास करके, बिकॉज बहुत आफते उठानी पड़ती थी इसका वीडियो देखने के लिए, घर वालों से छुप छुपा के देखना पड़ता था। याद है 90s-2000 में वो जो फोन हॉटलाइंस चलती थी जिसपे कॉल करके आप दोस्ती कर सकते थे, वो वाला थीम था इस वीडियो का। पिंक ड्रेस में तीन मॉडल्स होती हैं और फिर वो एक बोलती है, अकेले हो दोस्ती करोगे, एंड देन दिस सॉन्ग प्लेज, जो ओरिजिनली है 1982 की फिल्म ये वादा रहा से। इसे कंपोज किया है आरडी बर्मन ने, लिखा है गुलशन बावरा ने, ब्यूटीफुली संग बाय किशोर कुमार एंड आशा भोसले। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मैडम, गुड इवनिंग।
3: हाय,
4: बैंक से बोल रहे हो ना? हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
3: सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
4: पहले सब्जी बेचता था।
3: अगर अगली बार फोन आ गए ना
4: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
3: हेलो
4: मैडम, अगर ये स्कीम लोगे तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा। वे
5: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है। यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
4: मेरा, आपका तो मुर्गा बन गया है।
5: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
3: नहीं,
5: से सॉरी,
3: सॉरी ना मैं, सॉरी।
5: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को।
3: कोकड़ो
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
7: इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: फिल्म आपकी कसम में एक सीन था जहां पे राजेश खन्ना को संजीव कुमार को एक थप्पड़ मारना था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो फिल्म में सिचुएशन कुछ यूं रहती है ना कि राजेश खन्ना ऐसे शक्की हस्बैंड होते हैं जिनको डाउट हो जाता है कि उनकी वाइफ मुमताज का उनके फ्रेंड संजीव कुमार से अफेयर चल रहा है। तो ये सीन जहां पे राजेश खन्ना को संजीव कुमार को थप्पड़ मारना था, उन्होंने काफी जोर से थप्पड़ मारा, जिसकी वजह ये थी कि किसी एक्ट्रेस ने ये रूमर फैलाया था कि संजीव कुमार और राजेश खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू का अफेयर था। तो ये तब की कोई खुन्नस, तब का कोई गुस्सा संजीव कुमार पे निकला। ऐसा शेयर किया था अंजू महेंद्रू ने एक पुराने इंटरव्यू में। बताइए पर्दे पर हम जो सीन्स देखते थे या देखते हैं उनके पीछे क्या क्या कहानियां छुपी होती हैं? पता नहीं सच भी होती हैं कि नहीं। खैर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: सुनो कहा, सुना।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में।

0: न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

जैसे कि आने वाला गाना द ग्रेट गैम्बलर का दो लफ्जों की है दिल की कहानी। और अक्सर हम ना म्यूजिक डायरेक्टर्स का नाम जानते हैं कि ये गाना आर डी बर्मन ने कंपोज किया है, लेकिन उनके साथ पता नहीं कितने म्यूजिशियंस काम करते थे। कोई गिटार बजा रहा है, कोई कॉन्गो बजा रहा है, कोई मैंडोलिन बजा रहा है। तो इस गाने में जो आइकॉनिक मैंडोलिन ट्यून है ना बिगनिंग की, ये मैंडोलिन प्ले किया था म्यूजिशियन अरविंद हल्दीपुर जी ने। और भी कई गानों में उन्होंने गिटार प्ले किया है, मैंडोलिन प्ले किया है, बट दिस वन स्टैंड्स आउट। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

कुछ कुछ पुराने गाने ऐसे हैं कि वो गाने तो चलो आइकॉनिक क्लासिक ब्रिलियंट हैं ही, लेकिन उनका जो म्यूजिक है ना, म्यूजिक चाहे वो बीच में कहीं आ रहा है अंतरे से पहले या एकदम वो म्यूजिक जिससे गाना स्टार्ट हो रहा है, वो अलग ही तरह का क्लासिक है। मतलब वो म्यूजिक उस गाने की पहचान बन जाता है।

0: शायद तू ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली।

मासूम फिल्म का गाना ब्रिलियंटली संग बाय अनूप घोषाल जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नेशनल अवार्ड विनिंग सिंगर अनूप घोषाल जी ने मेनली बंगाली गाने गाए हैं। हिंदी गाने उन्होंने बहुत लिमिटेड गाए हैं, लेकिन जो गाए हैं क्या गाए हैं, जैसे कि ये वाला। और मैं ना बड़ी हैरान हुई जब मुझे पता चला कि ये गाना उस साल 31st फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में नॉमिनेट ही नहीं हुआ था। मासूम फिल्म को वैसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, लेकिन ये गाना नॉमिनेटेड ही नहीं था। नॉमिनेशन में 3 गाने शब्बीर कुमार साहब के थे, आई थिंक बेताब फिल्म के, और 2 गाने किशोर दा के थे। एक तो उनका सौतन फिल्म का शायद मेरी शादी का ख्याल, और दूसरा ये गाना जिसे एक्चुअली उस साल अवार्ड मिला था। सुनेंगे यहाँ पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu @rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: सारे शराबी। क्या हो राजा?
1: गली में आ जा।
2: होली होली
3: भांग की गोली ओ नखरे वाली।
0: दूंगी मैं गाली।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

झूठा वादा करने वाले बेवफा आशिक के नाम अर्ज किया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हाँ तो वादा तोड़ने वाले बेवफा आशिक के नाम अर्ज किया है। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। दाग देलवी साहब का शेर है ये। अच्छा, पूनम अलाबादी शायर लिखते हैं, बेवफा से भी प्यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है, यार कुछ भी हो यार होता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हाय, ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही हैं?
3: आप कौन बोल रही हैं?
5: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
3: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
5: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
3: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
5: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
3: ये तो वहाँ से मेरे पास,
5: अरे यार
3: जैसा आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
5: हो सकता है, हो सकता है।
4: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही? अरे भाई यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा हूँ, लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे तो तेरा कुछ जा रहा
3: है,
5: या बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है इस सर्विस में।
4: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ूकू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
3: मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये सुपरहिट आइकॉनिक सॉन्ग पहले एक डुएट सॉन्ग होने वाला था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी आशा भोसले एंड उषा उत्थुप जी, इनफैक्ट दोनों ने इस गाने की बहुत रिहर्सल्स भी की थी। ये बात उषा उत्थुप जी ने एक टेलीविजन शो में शेयर की थी, लेकिन ऑन द डे ऑफ रिकॉर्डिंग उषा उत्थुप जी को बुलाया ही नहीं गया। जब उन्होंने फोन करके पूछा कि कब आना है रिकॉर्डिंग के लिए, तो उनको बताया गया कि ये गाना अकेले आशा जी गा रही हैं। ये बात उनको बहुत हर्ट हुई उषा जी को, लेकिन उन्होंने फिर इंटरव्यू में आगे ये शेयर किया कि वो गुस्सा नहीं हुई क्योंकि वो बिलीव करती हैं कि गाने गाने पे लिखा है गाने वाले का नाम। तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं जिसपे कम्प्लीटली लिखा है उषा उत्थुप जी का नाम। क्या ब्रिलियंटली गाया है उन्होंने ये गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: अमर प्रेम फिल्म का ब्यूटीफुल गाना चिंगारी कोई भड़के। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस गाने की शूटिंग कैसे हुई थी एक बार ना कपिल शर्मा शो पे शर्मिला टैगोर जी ने शेयर किया था, सुनिए जरा।
1: अमर प्रेम में यू नो जो हुगली में हमने जो शॉट दिया ना वो रिवर में चिंगारी कोई सच अ लवली सॉन्ग, आप लोग सब थोड़ा सा आपको इल्यूशन टूट जाएंगे। जो लॉन्ग शॉट्स था वो सब एक्चुअल आउटडोर में किया गया, मगर बाकी गाने कंट्रोल करने के लाइटिंग वगैरह तो इट वाज इंडोर। एंड दैट लेक जो उन्होंने बनाए थे तो कम से कम 7-8 दिन रहा। कैन यू इमेजिन द स्टैग्नेंट, और फिर हमें चल के जाना पड़ता था, अजीब सा बदबू, स्मेल वाज लाइक दैट, बट डिस्पाइट हाउ लवली वी लुक ऑल द इल्यूजन नाउ विल गो।
0: तो अभी आप जब ये गाना सुनेंगे ना याद कीजिएगा कि शर्मिला टैगोर एंड राजेश खन्ना ऐसे बदबूदार पानी सूंघते सूंघते गाना पिक्चराइज कर रहे थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: आपको पता है प्रेम चोपड़ा साहब और राज कपूर साहब दोनों साड़ू साड़ू ब्रदर इन लॉज रहे हैं, मतलब इन दोनों की जो वाइव्स रही हैं वो सिस्टर्स रही हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और साड़ू साहब की फिल्म बॉबी से ही प्रेम चोपड़ा साहब को मिला उनके करियर का मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग। एक बार इस फिल्म में काम करने की स्टोरी उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर की थी, सुनिए।
1: राज कपूर साहब वाज अ जीनियस, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया यार एक पिक्चर में काम करना, तो उन्हें मेरी, मैंने कहा मैं तो उछल गया, मैं कहा व्हाई नॉट, करेंगे जी काम आपके साथ, कौन नहीं काम करेगा। बस वो बातों बातों में उन्होंने कहा ये है स्पेशल अपीयरेंस। अरे मैंने कहा अच्छा आपके लिए कुछ भी करूं। अब वहां पर पहुंचे कट पूना, तो मैंने पूछता रहा था बीच में राज साहब क्या डायलॉग क्या है यार, मेरे को सीन वीन तो बता दीजिए। बताएंगे यार बताएंगे बताएंगे। तो वहां पहुंचे तो कहते जी आपका एक ही डायलॉग सारी पिक्चर में, वो क्या है? प्रेम, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा।
0: गूज़बम्प्स अभी भी सुन के डर लगता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

अर्ज किया है, जरा गौर से सुनिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हाँ, तो ये शेर है असद भोपाली साहब का। ये आंसू ढूंढता है तेरा दामन, ये आंसू ढूंढता है तेरा दामन, मुसाफिर अपनी मंजिल जानता है। ये वही असद भोपाली साहब हैं जिन्होंने कई सुंदर गाने लिखे हैं, जैसे कि पारस मणि एक पुरानी फिल्म थी उसके गाने, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये वही गाना है जो राजश्रीज की फिल्म हम आपके हैं कौन के एक बहुत ही प्यारे सीन में इस्तेमाल हुआ था, जहां सारी फैमिली बैठ के वो गेम खेल रही होती है, जिसमें माधुरी दीक्षित का वो आहा वाला मोमेंट था, और उसके बाद माए नी माए मुंडेर पे तेरी वो गाना आता है उस सीन के बाद। खैर, राजश्रीज की एक और आइकॉनिक फिल्म मैंने प्यार किया के गाने लिखे हैं असद भोपाली साहब ने, तो एक गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मैडम, गुड इवनिंग।
3: हाय,
4: बैंक से बोल रहे हो ना? हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
3: सब्जी बेच रहे है या लोन के लिए?
4: पहले सब्जी बेचता था।
3: अगर अगली बार फोन आ गया ना
4: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारो सारे दांत। बात कर दो।
3: हेलो
4: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा। वे
5: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है। यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: है।
4: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
5: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
3: नहीं,
5: से सॉरी
3: सॉरी ना मैं सॉरी।
5: प्यार से बोल दीजिए कुकड़ो को।
3: कुकड़ो को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स।

0: ने जब हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की तो उनको उनके लुक्स, उनके वेट के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसी वजह से काफी एक्टर्स उनके साथ काम करने से मना कर देते थे। क्या रेखा ने भी कभी ऐसा किया कि उनको पता चला हो कि फलानी फिल्म का हीरो ये है और इसके साथ वो काम नहीं करेंगी? सुनिए एक बार एक पुराने और एक पॉपुलर इंटरव्यू में रेखा ने इस बारे में क्या कहा था।
1: ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर कहा है कि इस रोल के लिए ये पर्टिकुलर आर्टिस्ट सूट नहीं करते हैं, ये जरूर कहा, सजेशन जरूर दी है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि अच्छा अगर ये हीरो है तो भैया हमने काम करेंगे, क्योंकि मेरा किसी ऐसे हीरो या किसी आर्टिस्ट के साथ ऐसी रैपो, बैड रैपो है नहीं, सबके साथ मेरा अच्छा रहा।
0: और कौन से वो एक्टर थे जिनके साथ उनका रैपो सबसे बढ़िया था?
1: बहुत अच्छा, मेरा तो सबसे अच्छा तो मेरा रणधीर कपूर के साथ था। Unfortunately, अब मेरी कोई फिल्म नहीं है उनके साथ।
0: Well, ये mid-80s का इंटरव्यू था। इसके बाद रणधीर कपूर के साथ उनकी कुछ फिल्में आई थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: हाँ? क्या कहा?

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

दिस आइकॉनिक सॉन्ग कंपोज्ड बाय आरडी बर्मन। रिची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसा भी हो सकता था कि ये गाना शायद कभी बनता ही नहीं, क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स 1970 की द ट्रेन के प्रोड्यूसर्स एक्चुअली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन करने वाले थे इस फिल्म के म्यूजिक के लिए, लेकिन वो इन दिनों बहुत बिजी थे। फिर एसडी बर्मन साहब को भी अप्रोच किया गया, वो भी नहीं इसका म्यूजिक कर पाए। एंड देन इवेंचुअली आरडी बर्मन को साइन किया गया, एंड फिर एज यूजुअल आरडी ने अपने आरडीएक्स ब्रूम गाने बना दिए, जिनमें से एक ये भी था द वेरी आइकॉनिक द वेरी क्लासिक गुलाबी आंखें। फिलहाल आपने किसकी याद में अपनी आंखें गुलाबी लाल पीली नीली कर रखी हैं? जिसकी भी याद में कर रखी हैं, कोई ऐसा जो आपसे बहुत दूर चला गया है उसको और आपको डेडिकेटेड है ये अगला गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

दिल देना सीखो जी। बहुत बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स में चाहे इनका नाम नहीं लिया जाता हो, लेकिन सच बात ये है कि बहुत ही बड़े बड़े बढ़िया गाने इन्होंने बनाए हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है इनके नाम पर। वो अचीवमेंट ये कि फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक कॉम्पोजिशन जैसे मेल डोमिनेटेड एरिया में इन्होंने अपनी पहचान बनाई बढ़िया म्यूजिक बना के। मैं बात कर रही हूँ उषा खन्ना जी की। एंड दैट टू व्हेन शी स्टार्टेड लेट 50s, 60s, 70s, उस टाइम में। तो उषा खन्ना जी के कंपोज किए हुए गाने तो हम सुनेंगे ही, उनकी बातें भी और करेंगे, लेकिन म्यूजिक कंपोज करने के साथ साथ उन्होंने कुछ गाने गाए भी हैं। और नेक्स्ट सॉन्ग जो हम सुनने वाले हैं वो मेनली किशोर दा ने गाया है, लेकिन इसमें जो थोड़े से आपको फीमेल वोकल्स सुनाई देंगे, वो जो एक हमिंग है फीमेल वॉइस में, वो उषा खन्ना जी की है। जॉनी मेरा नाम का ये गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: भीड़ में रह के भी अकेला महसूस करना इज माई बिगेस्ट फियर।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्चे पे ट्यून्ड हो आप, और इस दुनिया में हर दूसरे इंसान का कोई ना कोई भय, कोई ना कोई फियर तो जरूर रहता है यार। और अचानक से डर भय की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज रिसेंटली एक इंटरव्यू में इम्तियाज अली ने अपने डर की बात शेयर की, एंड फॉर हिम इट इज अकेले खाना खाना। वेल, ये थॉट जब मेरे दिमाग में आता है देन आई एम क्वाइट यूज टू इट, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ और ऑन अ डेली बेसिस में अकेले ही खाना खाती हूँ, सो आई एम ओके डूइंग दैट। बट एट द सेम टाइम अगर 10 लोग हैं मेरे आसपास, मैं उस भीड़ में हूँ फिर भी अकेला महसूस कर रही हूँ, दैट इज समथिंग जो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाता। एंड कसम से बता रही हूँ, आई गेट इनटू अ पैनिक अटैक सिचुएशन। वैसे आई एम श्योर आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई ऐसा डर तो जरूर होगा यार, सो लेट्स शेयर ना, बिकॉज यू नो शेयरिंग इज केयरिंग। एक दूसरे का केयर कर सकते हैं। MIRCHISHRUTI यानी मिर्ची श्रुति के फेसबुक या इंस्टा पे साथ कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na
1: vietva la burka. Milci, burka. Hello.
2: Hello, Mr. Vipul, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
1: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
1: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
2: हाँ बताइए
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
2: नहीं वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
2: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
1: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
2: बिल्कुल,
1: से कम मुझे
2: बिल्कुल से बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जा कहाँ रहा है
2: नहीं वो जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
2: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
1: यार क्या बात कर रहा
2: है
1: मतलब
2: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उस पर मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
1: चल
2: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
1: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार
1: आपको से फोन मत करियो मैं हाँ? इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
2: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: तेरा क्या होगा कालिया
5: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
4: अब मिर्ची खा
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। लीक पे लीक। नहीं, मैं वापस से पेपर लीक की बात नहीं कर रही यार, बट हिंदुस्तान के एक अलग फ्रेटर्निटी में भी लीक चलता है, एंड दैट इज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। सो बेसिकली करण औजला, तो आपको पता होगा, उनके कुछ अनरिलीज ट्रैक्स एंड ऑडियो स्निपेट्स जो हैं वो ऑफिशियल रिलीज के पहले ही लीक हो गए। ये है बेसिकली उनके अपकमिंग एल्बम सी वॉक के स्निपेट्स, एंड इस चीज को बहुत ही अलग वे में लेते हुए, मतलब थोड़ा स्मार्ट प्ले करते हुए, खुद करण औजला ने इन क्लिप्स को व्यूअर्स के लिए ऑनलाइन कर दिया। इसको बोलते हैं नहले पे दहला। चलिए कॉकटेल 2 के कमाई की बात कर लेते हैं, जिसने फर्स्ट डे यानी ओपनिंग डे पे 10 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस ऑलरेडी कर लिया। वेल, फिल्म को बनाने में टोटल बजट लगा था 150 करोड़ का, और जिस हिसाब से फिल्म की कमाई जा रही है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि खर्चे निकल जाएंगे। रणवीर सिंह ने एक बहुत मेजर स्टेप लिया है, वो अगले 18 महीनों तक मीडिया से बिल्कुल दूर रहने वाले हैं, और इस चीज की कसम भी खा ली है उन्होंने। अब इस चीज का एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, वो डॉन 3 को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी हो, या फिर उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म प्रलय को लेकर ये डिसीजन लिया है कि भाई कमरा बंद करके मैं करूंगा इस बार फिर से तैयारी। खैर, बात जो भी हो, बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मची आहा। हमार सुनबा ना तो डैशे फाट जाए।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी क्लैरिफाई। मैं तो उड़ता पंजाब का एक डायलॉग मारने की कोशिश कर रही थी यार, एंड द रीजन इज कि इस मूवी ने इंडस्ट्री में 10 साल कंप्लीट किए हैं। सो आई थॉट कि भाई जिन साहब ने हम ऑडियंस को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से इतनी अच्छी पेशकश दी है, उनसे बातचीत तो बनती है ना यार। सो आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद अभिषेक चौबे, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी। हेलो सर, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया, थैंक्स फॉर कॉलिंग यार। 10 साल हो गए, पता भी नहीं चला।
0: 10 साल? तो सर आज जब आप इस फिल्म को पीछे मुड़के देखते हैं तो वो कौन सी मेमोरी है जो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक होती है?
2: सबसे बढ़िया जो बात है, जिस तरीके से ऑडियंस ने फिल्म को रिसीव किया, वो मुझे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से याद है। क्योंकि स्पेशली पंजाब में लोग ट्रकों में चढ़ चढ़ के गांव खेड़ों से शहर आए थे ये फिल्म देखने के लिए, ऐसी खबरें मिली हमें, और ऑडियंस ने इतना सराहा, क्रिटिक्स ने इतनी प्रशंसा की। तो ये मेमोरी जो है मेरी सबसे फॉन्ड मेमोरी है, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनती है एक फिल्म और अगर सराही जाए तो बहुत सुकून मिलता है।
0: डेफिनेटली सर, और जब आप मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत को ऑडियंस जिनके लिए आपने इतना खून पसीना लगाया है वो जब अप्रिशिएट करते हैं, देन तो भाई जिंदगी मुकम्मल सी लगती है। तो चलिए इस कॉन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करें।

0: भाई और कोई रैप याद हो ना हो, मुझे इस फिल्म का तो जरूर याद है।
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: देखो मैं हूँ आमने, औरत सी हो सामने, बुर्रा बुर्रा बुर्रा सब लगे अपने दिल थामने। ओके चुप हो जाती हूँ मैं, वरना इसमें ही दिन निकल जाएगा। सो बेसिकली उड़ता पंजाब का ये ट्रैक है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट द मूवी इज इक्वली अमेजिंग। और इस फिल्म ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 10 साल कंप्लीट किए हैं यार। तो ऐसे में इस मूवी को बनाने वाले यानी डायरेक्टर अभिषेक चौबे से मैं बात कर रही हूँ। तो सर अब डिटेल बातचीत शुरू हो ही गई है, तो जरा बताइए कि इस फिल्म से आपके लिए कोई शॉकिंग या फिर हार्ट टचिंग प्लॉट पॉइंट रहा है?
3: देखिए उस फिल्म में एक सीन है जिसमें शाहिद कपूर का कैरेक्टर टॉमी जो है जेल में जाता है, और जेल में वो बैठा हुआ है और उसकी वहाँ पे मुलाकात होती है दो बच्चे जो है यंग लड़के, वो उसका एक गाना गा रहे हैं और वो कहते हैं गाना गा करके उसका कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत मुरीद हैं आपके, बचपन से आपका गाना सुनते हैं। और फिर पता चलता है वो किस वजह से वहाँ आया है, बिकॉज वो खुद दलिच्छा है और उन्होंने ऐसा एक संगीन जुर्म किया है जिसकी वजह से वहाँ है। तो टॉमी को एहसास होता है कि उसकी आर्टिस्टिक लेगेसी है क्या। तो ये एक तरीके से हमने ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात, जब आप देखते हो कि कोई 17-18 साल का 15-16 साल का लड़का है

0: Energy. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La vida la murga.
1: Energy, murga. Hello.
2: Oh, madam, good evening.
1: Hi.
2: Bank je bolle ho na, hamari nahi scheme aaye. Madam, taji scheme hai, bariya scheme hai. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
1: है। तो सब्जी बेच रहा है या लोन के
2: लिए? पहले सब्जी बेचता था।
1: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
2: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर दो।
1: हेलो
2: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे।
1: मारूंगी ना।
3: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, आपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया।
2: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया।
3: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
1: नहीं,
3: से सॉरी,
1: सॉरी नवीन, आई एम सॉरी।
3: प्यार से बोल दीजिए कुकड़ो को।
1: कुकड़ो को।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट पकड़ा।
6: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
4: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: पंजाब में काफी बवाल मचा था इस फिल्म को लेकर।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप और मैं बात कर रही हूँ अबाउट दिस फिल्म उड़ता पंजाब, जिसने इंडस्ट्री में 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं मेरे दोस्त, और इसीलिए मैं इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक चौबे से बहुत डिटेल्ड चर्चाएं कर रही हूँ। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर इज अबाउट शाहिद। जब उनको आपने इस फिल्म में लिया, देन व्हाट ऑल डिड ही ब्रिंग ऑन द टेबल?
2: शाहिद ने काफी कॉन्ट्रीब्यूट किया कैरेक्टर बिल्डिंग में। शाहिद, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले वही आए थे कास्ट में, और ये शूटिंग के कुछ 8-10 महीने पहले आ गए थे वो, ये जॉइन द कास्ट ऑफ फिल्म। मैंने उनको नरेशन दी थी और उनको पसंद आई, और क्योंकि उस वक्त किस्मत से हमारे दोनों के पास वक्त था, क्योंकि मेरा प्री प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ था, शाहिद भी मसरूफ नहीं थे शूटिंग में, तो हमारे पास तीन या चार महीने का समय था जहाँ पर हम लोग जो है हफ्ते में एक या दो बार मिला करते थे और यूं ही बातें किया करते थे फिल्म के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, फिल्म के म्यूजिक के बारे में कि टॉमी का म्यूजिक कैसा रहेगा। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें उसमें उस कॉन्वर्सेशन के थ्रू निकली जो उनके कैरेक्टर में आई है। जहां तक सीन्स और डायलॉग का सवाल है, वो तो खास होती है, जिस तरीके की उसकी चाल है, जिस तरीके उसके कपड़े हैं, जिस तरह की उसका उसका बॉडी हो जाएगा, क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, यू नो, अगर वो टेलिक है तो उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो वो सब बात करने से हुआ। तो उसने भी जो तैयारी करी उस हिसाब से करी, तो मैं तो कहूँ कि हमारी इतनी डेप्थ में बात हो गई थी, मुझे शाहिद के प्रति ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वो खुद ही कॉस्ट्यूम डिजाइन के साथ बैठ करके किस तरीके से कपड़े होंगे वो खुद ही तैयार करवा करके मुझे दिखाता था, ये ठीक लग रहा है मेरे को, या फिर जैसे उसका हेयर का पूरा है उसने खुद ही वो तैयार किया लुक, पायल सलूजा जो हमारी लुक डिजाइनर कॉस्ट्यूम डिजाइनर है उनके साथ, तो ही ब्रॉट अ लॉट ऑफ हिमसेल्फ इनटू दैट।
0: क्या बात है, और आई एम श्योर ये चीज एक डायरेक्टर के लिए बहुत

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: गुम नहीं होता है, इट्स गुम फ्रॉम द एपिग्लॉटिस वाली फीलिंग। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ एंड आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद उड़ता पंजाब के डायरेक्टर अभिषेक चौबे। एंड द रीजन इज कि भाई इस फिल्म ने इंडस्ट्री में 10 साल कंप्लीट किए हैं। अब इतनी अच्छी फिल्म है, इतना अच्छा एल्बम है, तो सर ऑफ कोर्स डेफिनेटली माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराउंड द सॉन्ग्स ऑफ द मूवी। आपका फेवरेट क्या है इसमें?
3: ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल कर दिया आपने। मुझे बहुत सारे गाने पसंद है, एक चूज करना बहुत ही मतलब मेरे लिए आई फील आई विल नॉट बी डूइंग जस्टिस, बट लेकिन अभी एक थोड़ी तो सब काफी लोगों को आज भी ड्यूरेबल है वो गाना, आज भी लोग सुना करते हैं, बहुत पसंद आता है लोगों को। चिट्टा वे पूरी जो यू नो शाहिद की एनर्जी उसके लिए याद किया जाता है। एक और चीज को मैं कहूंगा, डीप कट्स में गाना तो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजेदार गाना अमित ने कंपोज किया है और शैली पाजी ने लिखा है बहुत ज्यादा। एक गाना है जो फिल्म की एंड क्रेडिट्स में आता है जिसका ज्यादा लोगों ने सुना नहीं है और मैं गुजारिश करूंगा कि लोग सुने उस गाने को, हट ना चले इसका गाना फिल्म की एंड क्रेडिट्स में आता है। सुफियाना है थोड़ा मैसेज जो फिल्म का सार है वो उसमें आता है और बहुत ही खूबसूरत गाना है।
0: ऑल राइट, सो यू हर्ड इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ योरसेल्फ, यानी कि फिल्म के डायरेक्टर ने आपको रिकमेंड किया है कि भाई एंड क्रेडिट्स में जो हंस नचले गाना है उसको अपने नॉर्मल जिंदगी में कभी चैन से बैठ के सुनने की कोशिश कीजिएगा। नाउ दैट्स द होमवर्क फॉर यू। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ और अभी और भी बहुत सारी फिल्मी बातें बाकी हैं, बट अभिषेक चौबे से आज के कॉन्वर्सेशन में सिर्फ इतना ही। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। लीक पे लीक। नहीं, मैं वापस से पेपर लीक की बात नहीं कर रही यार, बट हिंदुस्तान के एक अलग फ्रेटर्निटी में भी लीक चलता है, एंड दैट इज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। सो बेसिकली करण औजला, तो आपको पता होगा, उनके कुछ अनरिलीज ट्रैक्स एंड ऑडियो स्निपेट्स जो हैं वो ऑफिशियल रिलीज के पहले ही लीक हो गए। ये है बेसिकली उनके अपकमिंग एल्बम सी वॉक के स्निपेट्स, एंड इस चीज को बहुत ही अलग वे में लेते हुए, मतलब थोड़ा स्मार्ट प्ले करते हुए, खुद करण औजला ने इन क्लिप्स को व्यूअर्स के लिए ऑनलाइन कर दिया। इसको बोलते हैं नहले पे दहला। चलिए कॉकटेल 2 के कमाई की बात कर लेते हैं, जिसने फर्स्ट डे यानी ओपनिंग डे पे 10 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस ऑलरेडी कर लिया। वेल, फिल्म को बनाने में टोटल बजट लगा था 150 करोड़ का, और जिस हिसाब से फिल्म की कमाई जा रही है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि खर्चे निकल जाएंगे। रणवीर सिंह ने एक बहुत मेजर स्टेप लिया है, वो अगले 18 महीनों तक मीडिया से बिल्कुल दूर रहने वाले हैं, और इस चीज की कसम भी खा ली है उन्होंने। अब इस चीज का एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, वो डॉन 3 को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी हो, या फिर उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म प्रलय को लेकर ये डिसीजन लिया है कि भाई कमरा बंद करके मैं करूंगा इस बार फिर से तैयारी। खैर, बात जो भी हो, बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

दोस्तों मंडे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना काम तो बिल्कुल भी नहीं होती। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। क्योंकि यार मंडे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि दिमाग अभी भी वीकेंड टाइम जोन में होता है। बॉडी ऑलरेडी ऑफिस तो पहुंच जाती है, लैपटॉप ऑन हो जाता है, लेकिन दिमाग अभी भी सैटरडे के किसी लंच टेबल पर बैठा होता है। कोई अभी भी वीकेंड की फोटोज देख रहा होता है, कोई लेफ्ट ओवर्स फिनिश कर रहा होता है, और कोई सीक्रेटली कैलकुलेट कर रहा होता है कि नेक्स्ट लॉन्ग वीकेंड कितना दूर है। लेकिन मंडे शाम आते ना रियलिटी ऑफिशियली एक्सेप्ट हो ही जाती है कि चलो ठीक है वीक शुरू हो चुका है। लेकिन एक अच्छी बात तो जरूर है कि मंडे इवनिंग आते आते प्रेशर कम हो ही जाता है, सुबह वाली वो रश निकल जाती है, मीटिंग्स खत्म हो जाती है और अब थोड़ा सा अपना टाइम मिल ही जाता है। तो चलिए दोस्तों मंडे को भी इतना सीरियसली नहीं लेते, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा मस्ती और थोड़ी शाम शानदार हो जाए। और आप भी बताइए कि आप ऐसे मंडे को कैसे सर्वाइव करते हो, आपका सीक्रेट वेपन क्या है, कॉफी, चाय, म्यूजिक या प्योर विल पावर। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि इस शाम को शानदार बनाने के लिए मेरा जो सीक्रेट वेपन है वो है आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
1: हेलो।
2: हेलो,
1: कौन बोल रही हैं
2: आप? कौन बोल रही हैं?
1: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
1: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
1: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास,
1: अरे यार
2: जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
1: हो सकता है, हो सकता है।
0: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
1: हेलो।
2: हेलो,
1: कौन बोल रही? अरे भाई यार मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार? तू लाइन में आ रहा हूँ, लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है? तो
1: यार बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
0: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ूकू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल

दोस्तों, हर फैमिली के घर में एक कबर्ड होता है जिसमें पुरानी चीजें छुपी होती है। लेकिन सोचो, अगर एक दिन घर में एक डेड बॉडी छुपानी पड़ जाए तो। शमशादा लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और इस हफ्ते ओटीटी पे सबसे इंटरेस्टिंग बज बना है माँ बहन को लेकर। जी हाँ, फिल्म में माधुरी दीक्षित, तृप्ति दिमरी और धर्णा दुर्गा एक माँ और दो बेटियों के रोल में नजर आ रही है, जिनकी ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ और भी ज्यादा उलझ जाती है जब उनके घर में एक लाश मिल जाती है। डार्क कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और केओस, तीनों एक साथ। और मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात इस मूवी की ये लगती है कि जहाँ हमने माधुरी जी को रोमांस, डांस और ड्रामा में देखा है, लेकिन डार्क कॉमेडी में जब ऑडियंस उन्हें पहली बार देखेंगी ना, एक अलग ही फ्रेश एक्सपीरियंस बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का टोन सस्पेंस से ज़्यादा क्वर्की फैमिली मैडनेस वाला है। तो आप भी ज़रूर बताना कि माधुरी जी को इस नए अंदाज में देखने के लिए आप कितने बेसब्र हो। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए माधुरी का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

दोस्तों, सीक्वल्स तब बनते हैं जब ओरिजिनल की यादें ना लोगों के दिल से जाती नहीं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो कॉकटेल को रिलीज हुए सालों हो गए, लेकिन आज भी उसके गाने जब भी बजते हैं ना, लोग एकदम से उसी दुनिया में वापस चले जाते हैं। और अब कॉकटेल 2 की रिलीज के साथ वही फीलिंग फिर से आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉकटेल 2 ना बिल्कुल भी पहली कॉकटेल जैसी नहीं है। मतलब दुनिया वही है, इमोशन वही है, लेकिन प्रेजेंटेशन बिल्कुल नया है, कहानी नई है, अंदाज नया है, एकदम नए अवतार में। और शायद जिंदगी में भी ना हम सबको यही बात पसंद है, पुरानी चीजें लेकिन नए अवतार में। क्योंकि जब कोई पुरानी पसंदीदा चीज एक नए रूप में वापस आ जाती है ना, तो उसका नया अवतार, नया वर्जन देखने में ना वही मजा आता है। और शायद इसीलिए कुछ लोग आजकल अपनी पुरानी चीजों को भी ना एक नए अवतार में देखना पसंद कर रहे हैं। और इसी थॉट के साथ तनिष्क भी लाया है फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, यानी आप अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी विच इज अबाउट 9 कैरेट बॉट फ्रॉम एनी ज्वेलर्स लेकर जा सकते हो तनिष्क के पास फॉर फुल वैल्यू एंड विद 0 deductions, and you'll also get an additional $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases. Terms and conditions apply. तो आज ही विजिट कीजिए तनिष्क न्यू जर्सी एट 1429 ओक ट्री रोड इजलिन, और अपने ओल्ड ज्वेलरी को दीजिए एक नया अवतार। और अब देखते हैं कॉकटेल 2 अपने म्यूजिक के साथ कितनी नई यादें बनाता है। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट कॉकटेल 2 सॉन्ग, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मेरा फेवरेट गाना बजाते हैं अभी राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, प्यार का ना सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है? पागलपन। और वो भी वो वाला पागलपन जिसका कोई इलाज नहीं होता। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज बात उस गाने की हो रही है जो याद दिलाता है कि प्यार में ना थोड़ा पागल होना अलाउड है। सैयारा का गाना तुम हो तो, क्योंकि इस गाने को सुनते वक्त लगता है कि जैसे दुनिया का सारा लॉजिक एक तरफ और दिल एक तरफ। और इसे गाया और कंपोज किया गया है विशाल मिश्रा ने, जिनके गाने की ना एक खास बात होती है कि वो प्यार को परफेक्ट नहीं दिखाते, वो उसका पागलपन दिखा देते हैं। किसी का मैसेज बार बार पढ़ना, बिना वजह स्माइल करना, हर गाने में एक ही चेहरा दिखाना, यार ये सब वही स्वीट मैडनेस है जो इस मेलेडी में महसूस होती है जब भी हम ये गाना सुनते हैं। और विशाल मिश्रा की सॉफ्ट वोकल्स और कंपोजिशन गाने की फीलिंग को इतना गहरा कर देती है ना कि लिसनर खुद अपनी कहानी सोचने लगता है। और शायद इसीलिए उनके रोमांटिक सॉन्ग्स इतने ज्यादा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें प्यार कम और उसका पागलपन ज्यादा सुनाई देता है। तो चलिए आज कन्फेशन करते हैं, प्यार में आपने सबसे पागल चीज क्या की थी? लॉन्ग ड्राइव, लेट नाइट कॉल्स, या फिर किसी का लास्ट सीन चुप चुप के देखना? टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और सुनते हैं विशाल मिश्रा ने गाया हुआ पागलपन वाला ये गाना, तुम हो तो, फ्रॉम सैयारा, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

दोस्तों, क्या कभी किसी गाने ने आपको आपकी ही कहानी याद दिलाई है? वो पहला प्यार, वो रात भर चलने वाली बातें, वो एक नाम जो आज भी किसी गाने के साथ याद आ ही जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और बात हो रही है एक ऐसे कंपोजर की जिनका हर गाना हमें अपनी कहानी जैसा लगता है। अ वॉइस दैट गेव अस कैसे हुआ, पहले भी मैं तुम हो तो, जिन गानों को ना हमने सिर्फ सुना नहीं है बल्कि महसूस किया है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आ रहा है विशाल मिश्रा पागलपन टूर, ब्रॉट टू यू बाय अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC। और नाम ही सब कुछ कह देता है, पागलपन यानी वही पागलपन जो प्यार में होता है, वही पागलपन जो किसी याद को गाने के साथ जोड़ देता है, और वही पागलपन जो अटलांटिक सिटी में हजारों लोगों को एक साथ एक ही सुर में लाने वाला है। तो डेट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि विशाल मिश्रा आ रहे हैं 26 जून शुक्रवार की शाम को हार्ड रॉक लाइव एट ईटस एरिना अटलांटिक सिटी में। और आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो फ्रॉम ticketmaster.com या फिर saiyusa.com। और हमेशा की तरह मिर्ची लिसनर्स के लिए एक खास कॉन्टेस्ट, आपको बताना है कि विशाल मिश्रा का कंपोज्ड गाना कैसे हुआ, कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी कैसे हुआ, कौन से मूवी का है। DM me on Insta @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर आप मुझे WhatsApp कर सकते हो @9033647244 टू विन फ्री कॉन्सर्ट टिकट्स। एंड रिमेंबर माई फ्रेंड्स, इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई USA INC प्रेजेंटेशन, सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ब्लॉक बस्टर इवनिंग विद विशाल मिश्रा पागलपन टूर, एक शाम।

जहाँ गाने सिर्फ परफॉर्म नहीं होंगे, वो आपको आपकी खुद की कहानी याद दिलाएंगे। तो जल्दी से अपने टिकट बुक कर लीजिए और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Yabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Oh, madam, good evening.
2: Hi.
3: बैंक से बोल रहे हो ना, हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
2: तो सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
3: पहले सब पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना
3: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
2: हेलो
3: मेरा, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा। वे
2: वहीं आके ऐसा तेरे पैर तो मारूंगी ना।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ही एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया।
3: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था, ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी।
2: प्यार
4: से बोल दीजिए कोकड़ो को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

शमशादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका मंडे की इस खूबसूरत शाम में। वैसे तो यार जब भी मंडे आता है ना, थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स ही आ जाती है। कभी कभी लगता है कि चलो मूड ऐसा होता है कि दुनिया जीत ले, और कभी कभी लगता है कि क्यों ही जीतनी है दुनिया। मतलब हर चीज़ पर क्वेश्चन करने का मन करता है, फिर चाहे वो शॉपिंग करने का हो, फिर चाहे वो प्रोडक्टिविटी गोल सेट करने का हो, या कुछ भी हो। तो जैसे कभी कभी मंडे को मिक्स्ड फीलिंग्स होता है ना, वैसे कभी कभी मिक्स्ड मार्केट्स भी होते हैं, और मार्केट जो उथल पुथल होते हैं उसका हमारे बाइंग पोटेंशियल पे क्या क्या इंपैक्ट होता है, यही तो बताने आ रहे हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हैरत से नहीं, एनर्जी से भर गया था ये ट्रैक, क्योंकि यार ये गाना फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी सुन के यार मूड ना एकदम ऑटो फ्रेश हो जाता था। लकी अली की वॉइस विशाल शेखर के बीट मैजिक क्रिएट कर देता था। और जी हाँ, हैरत वो गाना था जो रणबीर के जो बाइक राइड या कार राइड के सीन्स थे उन सबको भुलाकर अपने इनर ट्रैवलर को जगाने के लिए बनाया गया था। मतलब अगर वेगस में ड्राइव कर रहे हो तो मन में हैरत गाना तो बचता ही था। तो चलिए आज इस गाने का टेम्पो फील करते हैं। गाड़ी फुल स्पीड में मत चलाना क्योंकि हम अभी भी न्यू जर्सी में हैं, लेकिन गाने का तो फील कर सकते हैं बॉस। तो चलिए सुनते हैं हैरत फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी बता सकते हो विच इज योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए हैरत राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम की जिसका हर एक गाना यार हिट पे हिट था। और इस एल्बम का जो टाइटल ट्रैक था उसने यार सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि पूरे जनरेशन का मूड बना दिया था। जी हाँ, बात हो रही है अनजाना अनजानी की। और अनजाना अनजानी की जो कहानी है, जो विशाल ददलानी और शिल्पा राव के डुएट में गाया गया था, जिसके लिरिक्स में ही ना वो एक वंडरलस्ट फील था कि कौन जाने कौन हूँ मैं, मतलब इंस्टेंट कनेक्ट था। और सबके लाइफ में जो ये अपनी जो भी अपनी राह ढूंढ रहे होते हैं ना, उनके लिए एकदम हिटिंग सॉन्ग था ये। वैसे गाना सुन के तो लगता था जैसे जिंदगी ना एक ट्रिप ही है, मतलब डेस्टिनेशन नहीं। तो अगर आपको भी ऐसा ही गाना जर्नी वाला पसंद है तो मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम योर फेवरेट एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और फिलहाल बजाते हैं ये अनजानी का सुपर डुपर हिट गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, 2010 में आई थी ये एल्बम अनजाना अनजानी, कंपोज्ड बाय विशाल शेखर। और इसका एक ऐसा गाना आया था जिसमें यार मतलब दिल तोड़ दिया या फिर यादें छोड़ गई हो ना, बस वो गाना सुन लो हर फीलिंग डबल हो जाती थी। मोहित चौहान की आवाज़ में और शेखर रवजियानी ने भी जो इमोशन दिया था इस ट्रैक में, ओहो किसी थेरेपी से ना कम नहीं था। क्योंकि इस गाने में सूफी टच भी था, मॉडर्न मेलेडी भी थी, जैसे कि दर्द और सुकून बिल्कुल एक साथ मिल गए हो। तो दोस्तों इतना प्यारा गाना इस एल्बम का। वैसे तो यार इस एल्बम के हर एक गाने अमेजिंग थे, तो आपको कौन सा गाना इस एल्बम का सबसे ज़्यादा पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये जो ब्रेकअप रिकवरी वाला गाना है ना, सुन लेते हैं यार विशाल शेखर की कंपोजिशन राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. Na virva la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Hello, Mr. Vipul, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
1: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
1: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
2: हाँ बताइए
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
2: नहीं वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
2: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
1: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
2: बिल्कुल,
1: से कम मुझे
2: बिल्कुल,
1: से,
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जा कहाँ रहा है
2: नहीं जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
2: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
1: यार क्या बात कर रहा
2: हूँ नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
1: चल
2: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
1: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं यार मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार
1: फोन मत करो मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
2: क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज की क्रेविंग होती है तो वो क्या है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सबके दिल से एक ही आवाज निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफर चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल, गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफ़र की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज़्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कम्फर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम चांदा लाइक सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज एक ऐसे एल्बम के बारे में बात हो रही है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, अनजाना अनजानी 2010 में रिलीज हुआ वो एल्बम। और आज की जो रिक्वेस्ट आई, सॉन्ग रिक्वेस्ट, दैट इज फॉर द सॉन्ग तुमसे ही तुमसे। और ये जो रिक्वेस्ट आई है, दैट इज फ्रॉम रिया, जो कि रहती है एडिसन में। और रिया जी कहती है कि यार ये गाना जो तुमसे ही तुमसे गाना है, प्लीज सिद्धि जी बजा देना, क्योंकि ये मूड रोमांटिक है और वेदर भी रोमांटिक है, तो ऐसे माहौल में ये गाना तो बजना चाहिए। तो जी हाँ रिया जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। दोस्तों वैसे क्या आपको 2010 का वक्त याद है, जब अनजाना अनजानी एल्बम ने सबको होपलेस रोमांटिक ही बना दिया था? मतलब विशाल शेखर का मैजिक चला था और इतनी खूबसूरत सी आवाज़ है हर गाने में, विशाल की कहिए, शिल्पा राव की कहिए, रणबीर प्रियंका की केमिस्ट्री, ओ हो, मतलब तुमसे ही तुमसे एक बहुत ही सुंदर सा गाना है, जहाँ हर नोट लगता है जैसे दिल से निकला हो। जैसे लॉन्ग ड्राइव पे सनसेट के टाइम ये गाना बज जाए ना, तो बस दुनिया रुक जाए। और मुझे तो लगता है कि हर किसी के लाइफ में एक तुमसे ही तुमसे मोमेंट ज़रूर होता है, जहाँ सब कुछ एकदम ब्लर सा हो जाता है और बस वो एक इंसान दिखता है जो दिल में है। तो बताइए आपका तुमसे ही तुमसे मोमेंट कब आया था? टेल मी ऑन इंस्टा आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर इसी एल्बम का आपका फेवरेट गाना भी आप बता सकते हो। फिलहाल हम बजा रहे हैं तुमसे ही तुमसे, रिया जी के रिक्वेस्ट पर, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। चम चंदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है 2010 के एल्बम की, अनजाना अनजानी के एल्बम की, जिसको कंपोज किया है विशाल और शेखर ने। और फिलहाल जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज फ्रॉम राज, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। और यार वो कहते हैं कि यार माहौल इतना अमेजिंग सा है, मौसम खूबसूरत सा है, तो थोड़ा अपबीट गाना चाहिए। जी हाँ, तो इसी के लिए आई फील गुड जरूर बजाइए। तो बस नाम ही काफ़ी है यार, मतलब आई फील गुड एक ऐसा गाना जो बजते ही लगता है कि दुनिया में ना स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और रणबीर और प्रियंका की केयर फ्री केमिस्ट्री इन दिस मूवी अनजाना अनजानी, न्यूयॉर्क इन नियॉन लाइट और विशाल ददलानी की वो रॉक स्टार एनर्जी, इस सॉन्ग को हर बीट में ऐसा लगता है कि बस लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाओ और चिल कर लो यार। तो चलिए आज बजाते हैं आई फील गुड फ्रॉम द वंडरफुल एल्बम ऑफ अनजाना अनजानी, जिसका हर एक गाना ज़बरदस्त है। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो वो ऐसा कौन सा एल्बम है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए राज के रिक्वेस्ट पर बजाते हैं आई फील गुड राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों कुछ लव सॉन्ग सुनते ही लगता है कि ये गाना लिखा नहीं गया है, किसी ने ना बस दिल की बात रिकॉर्ड कर दी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और न्यू जर्सी के शाम में अगर कोई गाना प्यार की सिंप्लिसिटी को कैप्चर करता है ना, तो वो है कैसे हुआ फ्रॉम द एल्बम कबीर सिंह। और यार कैसे हुआ सुनते वक्त ना मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इसके जो कंपोजर है विशाल मिश्रा, उनको शायद द ग्रैंड रोमांस से ज़्यादा छोटी छोटी फीलिंग्स पसंद आती होंगी, क्योंकि इस गाने में ना ज़्यादा ड्रामेटिक डिक्लेरेशंस हैं ना ओवर द टॉप अरेंजमेंट्स है, बस एक सिंपल मेलेडी है जो यार सीधा दिल तक पहुंचती है। क्योंकि विशाल मिश्रा ने इस गाने को कंपोज भी किया है, लिखा भी है और खुद गाया भी है, और शायद इसीलिए ये गाना इतना ऑर्गेनिक लगता है। जैसे कबीर सिंह के इंटेंस वर्ल्ड में ये ट्रैक ना एक सॉफ्ट सी हार्टबीट की तरह काम करता है। और कभी कभी ना सिंप्लिसिटी सबसे मुश्किल चीज़ होती है, और ये वो गाना है जो उसका एब्सोल्यूट प्रूफ है। क्योंकि यार विशाल मिश्रा की मेलेडीज़ में ना एक खास बात ज़रूर होती है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। पहली बार सुनो तो लगता है कि जैसे गाना ना पहले से ही दिल में था, और शायद इसीलिए कैसे हुआ आज भी लोग गाते हैं, चाहे उन्हें गाना सीखा है या नहीं सीखा है, लेकिन दिल से गुनगुनाते ज़रूर है। तो दोस्तों आप भी बताना कि आपकी लाइफ का वो कैसे हुआ मोमेंट क्या था जब प्यार ने बिना नॉक किए एंट्री मार दी थी, और क्या तब ये गाना

0: Michi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vinva la burga. Michi, burga.
2: Hello.
3: Oh, madam, good evening.
2: Hi.
3: Bank se bolle ho na, hamari nahi scheme hai ye. मैडम ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
2: सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
3: पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
3: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है। यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
2: है।
3: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी
2: नवीन, आई एम सॉरी।
4: प्यार से बोल दीजिए कोकड़।

शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी कुछ कॉन्सर्ट्स ना सिर्फ कॉन्सर्ट्स नहीं होते, वो यादों का रीयूनियन होता है। एक गाना चलता है और आपको आपका पहला प्यार याद दिला देता है, दूसरा गाना आता है और पुराने दोस्त, लॉन्ग ड्राइव्स और वो रात भर चलने वाली बातें भी याद आ जाती है। और जब बात हो विशाल मिश्रा के कंपोज गानों की, तो यार उनके गाने ना सीधा दिल तक पहुँच जाते हैं। इसीलिए एक्साइटमेंट डबल है क्योंकि इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई USA INC प्रेजेंटेशन, और ये होने वाला है ग्रैंड, मैजिकल और ट्रूली अनफॉरगेटेबल, क्योंकि विशाल मिश्रा आ रहे हैं विद पागलपन टूर इन अटलांटिक सिटी। और अगर आपने भी कैसे हुआ पहले भी मैं तुम हो तो या उनके किसी भी गाने को सिर्फ सुना ही नहीं लेकिन महसूस भी किया है, तो ये शाम आपके लिए है दोस्तों। हजारों फैंस एक साथ गाते हुए लिरिक्स, फोन फ्लैश लाइट्स का समंदर और वो गूज बम्स वाला मोमेंट जब पूरा एरिना एक ही सुर में गा रहा होगा, June 26 की शाम को हार्ड रॉक लाइव ईटिस एरिना में कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो जल्दी से अपने टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम टिकट मास्टर या फिर साई USA INC फॉर विशाल मिश्रा पागल पर टूर। और सारे जो रेडियो मिर्ची के विशाल मिश्रा फैंस हैं उनके लिए एक बहुत ही खास कॉन्टेस्ट। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है कि विशाल मिश्रा का गाना कैसे हुआ, कौन से मूवी का है, यू हैव टू टेल मी ऑन माई इंस्टाग्राम। तो बस DM कर दीजिए @RJMirchiSiddhi SIDDHI आपका जवाब, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो @9033647244 9033647244, और लकी विनर्स को मिलेंगे इस अमेजिंग टूर के फ्री टिकट्स। तो दोस्तों विशाल मिश्रा पागलपन टूर, डेट नोट डाउन कर लीजिए, June 26, वेन्यू हार्ड रॉक लाइव एट ईटिस एरिना, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वेन्यू इन द एंटायर न्यू जर्सी। टिकट्स बुक कर लीजिए ticketmaster.com या फिर USA INC। और देखिए दोस्तों इट्स विशाल मिश्रा पागलपन टूर ब्रॉट टू यू बाय अमित जेटली ऑफ साई USA INC। तो एक ऐसी म्यूजिकल जर्नी होने वाली है जिसकी यादें काफ़ी हफ्तों तक आपके दिमाग में रहेंगी, आपके दिल में रहेंगी। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से अपने टिकट्स बुक कर लीजिए, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

कभी कभी कोई गाना ऐसा होता है जो बजते ही शाम का मूड चेंज कर देता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और 2000 एरा का एक ऐसा ही टाइमलेस ट्रैक है कल हो ना हो। यार जैसे ही उसका सॉफ्ट पियानो इंट्रो शुरू होता है ना, सडनली सब कुछ थोड़ा सा स्लो लगने लगता है। ड्राइव हो, चाय हो, या बस विंडोज से बाहर देखना, यार इस गाने की खूबसूरती ही ये है कि ये लाउड नहीं है पर इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा डीप है। सिंपल सी मेलोडी है, सोलफुल सी आवाज है, वो भी सोनू निगम की, और वो लाइन जो याद दिलाती है कि हर दिन को ना थोड़ा और अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसीलिए जब भी ये ट्रैक रेडियो पे आता है ना, लोग ऑटोमेटिकली वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा ही लेते हैं, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो ना मूड बन जाते हैं। तो दोस्तों आप भी बताना कि कौन सा ऐसा बॉलीवुड का गाना है जो सुनते ही आपको भी वो पॉज और फील मोमेंट मिलता है। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए आपके लिए कल हो ना हो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये, ये, ये, ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।
2: शेख ये बात ही गया।